0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रश्नपत्र लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्टर कोर्ट के निर्णय की सराहना की है।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं

0: पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्री वांगचु को रचनात्मक संवाद और सकारात्मक हस्तक्षेप का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को लेकर दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
1: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है।
0: श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर भी सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है। राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित हो गई है, लोकसभा की कार्यवाही जारी है। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 719 अंक गिरकर 75,672 जबकि निफ्टी 196 अंक गिरकर 23,673 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Nasimang Yan Akashwani Tura. Nasimang Delhi Station Niko Watas Kagapa Hindi Hoborangko Knasona Manaha. Somoy Dao Salni Chigni Baji Minit Ponga Waha Aroya Somoyo Nasimangna Da Al Salna Tari Sogman Dongkuingaba Program Ranko Aro Da Alatamna Tari Sogman Program Ranko Somoyrang Waksa Sulsul Yatinga. Chigni Baji Minit Kungo Tasong Talni Gitranko Gamatangin Aruwa Somoyo Summerlian Sangma Aru Lukas Maraknir Gabagi Dranko Knasona Mangin Chigni Baji Minit Kolachio Vivid Bharati SMS K Bahani VBS K Tarani Chigni Baji Minit Sot Ponga Ponga O Vivid Bharati Jaroka Sa Bajio Vivid Bharati Hit Super Hit Sa Baji Minit Kolachio Vivid Bharati Man Chahe Git Gni Bajio English Kobor Minit Gni Baji Minichi Bonga o Hindi Kobor, Gni Kolachio Vivid Bharati, Gatambajio Hindi Kobor, Gatambaji Minit Bonga o English Kobor, Kobaranko Knasona Mangen. Pulsatai Atamni Bonga Sot Bonga Cheto, Atamni Program Ko Abaching Taigen, Aru Ua Somoina Tarisokuman Program Rangara, Dok Bajio Yatanirang, Dok Minit Bonga o Shilongoniko, Atat Kapa Chikoborang, Dok Chibong Aur Matelani Gitrang, Dok Kolachio Chadam Berangni Program, Sni Bajio Hindi Film Nigitrang, Sni Minit Kolachio Vivid Bharati Program, Chet Bajio Hindi Kobor, Chet Minit Bonga o English Kobor, Chet Minit Kungo Western Instrumental Music, Chet Minit Chibonga o Parliamento Tometan Chiani Koborang, Chet Minit Kolachio Kalsusani Koborang, Chet Sotbribong o Hindi Kobor, Sku Bajio English Kobor, Sku Chibonga o Spotlight Program, Sku Kolachio Vivid Bharati Program, Chkung Bajio ni Chisa Bajio na Dalo Rajya Sabha Aro Lok Sabha O question hour ni sumoyo gamanang ko record ka gaman ko knaso naman gen. Yarangan daal sal na don soing pa program rang aro daal atam na tari so gaman program rang unga. Tao dugtik sa ni jakmano na simang chigni baji minit keng unga haun chasong gatal ni gitrang ko knang naman gen. Ian Akashwani Tura.
3: और शुगर में कटौती कराना शुरू कर दे। खाना पकाने के दौरान थोड़ा सा उपयोग करा के इस प्रक्रिया को शुरू करें। ताजी सब्जियां, दही और फलों में भी और ना डालें। क्या आप अपनी चाय चीनी के साथ लेते हैं? कोई बात नहीं, आप पी सकते हैं। लेकिन अपनी चीनी को लगभग आधा चम्मच तक कम कर दे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: नासीमांगनी दाखना नंगने रंग अल्टुबेया खासा फाई यानो नंगनी गमन से रखिया ने रंग ओमांग जा वरंग को नियन बा एन्यूमरेशन फॉर्म का पत्ते सोए खात पो आरो बानो बा ग्वालानी रंग को थरे दाखना नंगों दे अंगना व्यक्त पो
5: इंडियन इलेक्शन कमिशन जून फलाची तारीखों ने जुलाई को रुक्स को तारीखों ना स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ने कथाम को पा बाखो आवा चिंगाते हा बूथ लेवल ऑफिसर रंग नासीमांगनी नोकान च्यूना रि अंगेन
6: नोकान च्यूना
5: ओए नोकान च्यूना रि अंगेन बा ओमांग नासीमांगनी डुप्लीकेट एन्यूमरेशन फॉर्म को गपा छिना उगेन आरो खिसा को नासीमांग रखी छिना दन बागेन नाम मेन अल्छुआ बा
6: आलो विजो बिसोनि रेबाउ नासिमा मामु लेखा गबो न नंगजवा
7: आंगा नको दोंजावसै
5: ओ जाजिंग न नंगजवा बा दोंजावबा बियालो रांगान इनोमेरेशन फॉर्म खौ नंगि दुबा छुलन दोना गेन बा आरो खौ मानां खुजाना दुपेते वमन संगे थांना खिनखु रेबा फथाय गेन आरो न आमायबा सिखानि रां गंगेन छमो दे वमन न खौ खाय गोल फथना बा मानना गेन
7: ओ इयारा न मेन नाल छुबिया दे इंदिबा आंगा रे याखौ बानोनि खौ थालेरा गेन
5: इंदिन खाना मानगुपा वोटर हेल्पलाइन नंबर सास्कुबो 09 खाथो बा वोटर हेल्पलाइन एप खौ डाउनलोड खाबो बा वोटर्स eci.gov.in वेबसाइट ओना পাঙ্গিনিবো আর উনবক্সাও www.ceo.meghalaya.nic.in ওয়েবসাইট নাবানা পাঙ্গিনি নামান গেন
7: নাকনি খুরাং নাকনি পুনানিব নাকনি দোগা চলন উকো গমাতনাবে ইয়াকো উইয়াতপা চিফ ইলেক্টোরাল অফিসার মেঘালয়া
8: ওই সিংবো নাসুং দেওনি যাবো রং খুরাং না গোয়ালিং খন
9: গোয়াল জাবাবি এন্ডিবা চিংগাতে আংনা মানজাবা হা हाजागनि खौतो बिसिनि जाबोरांखौ गालानि नियामोदे जाबोरांखौ दंथां दंथां सुमंगजादे उखर आङै गालना उनजायङा हा
8: यानोंचों मता दाउनि गतालगबा जाबुल गालानि नियामोदे सोनंगपार सोनंगि जागबा जाबोरांखौ आपसान सुमंगै गालदमानिखौ सरकारी चाम्पिङा हा उनिगमन जाबोरांखौ मंग्रि दाकेशुवालिसा गालना नंगेन सखांगपा सोनंगपा जाबोरां जेहै गालगमन मिसु समजाखरां आरो बिथेरांनि बिगलरां गनिगपा जाखाबुदायना मानगपा सोनंगि जाबोस्तुरां जेखाय प्लास्टिकरां आरो चामसुरां गथामगपा रोंथालांथालातानि जाखालगबा बुस्तुरां ब्रिगपा बेटारी ट्यूबलाइट आरो ग्लासरां
10: आ यारंग मखोनांगा दका ओदे
9: उनोदे सिङा खाचन जाबोरांखौ गालना रा आयेन
8: दालोनि नंथांथांनि दाखना नंगनि गोरा सिमां दाखबो अनथांथांनि सारा नखरारां खरं थाले राखिबो आरो आंसिंग बाजोपि दंबो याखौ जिनमानि नंगनि ना डायरेक्टर अर्बन अफेयर्स डिपार्टमेन्ट गभर्नमेन्ट अफ मेघालय उयातिङा
2: यान आकाशवाणी थुरा दाउना सिमां छासंगतलनि गिद्रांखौ खनासोना मोनगिन सखांगापावना सिमांना समरलियन सांगमानि গীত্রাঙ্ক গাম্মাতাং ইয়া গীত্রাং ইয়া নো নো আং নি রানী আরো খাসারা আমা

0: दूर जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अनीता फिल्म का गीत राजा मेहंदी अली खान के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। शोर फिल्म का गाना संतोष आनंद के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। विविध भारती पर यादों की महफिल, आज मनोज कुमार की याद।

पहचान फिल्म का ये गीत आपने सुना। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम सन्यासी। विश्वेश्वर शर्मा है गीतकार।

इसी के साथ अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। आज के इस कार्यक्रम में थे मनोज कुमार की कहानी।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम एक ही भारत एक टेक्स्ट पोस्ट करते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती का फेसबुक पेज ढूंढने के लिए लिखना है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और आप विविध भारती के टेक्स्ट पर पहुंच जाएंगे। आज का जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरह से है, तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है? नीला। और तुम्हारा? लाल। तुम्हें समंदर पसंद है या वादियां? समंदर में वादियां। ऐसा होता तो नहीं? सोचो कभी ऐसा हो तो। अच्छा, तुम्हें भोर पसंद है या शाम? दोनों। तुम्हें आसमां पसंद है या जमीन? दोनों। अरे घोड़ा चतुर मत करो, किसी एक पर रहो। अच्छा, तो मैं एक चुनौती देता हूं, देखते हैं तुम कितनी देर

रह सकती हो। ये बात है तो लो, अब मैं तुमसे रूठ गई, जाओ। छोटी सी बातचीत की एक इबारत आज के इस कार्यक्रम का मसौदा, और इसमें वो शब्द शामिल हैं जिन पर केंद्रित होगा आज का कार्यक्रम, यानी उन शब्दों से गाने चुनकर आज हम आपको सुनवाएंगे। छोटी सी क्यूट सी बातचीत, और इस क्यूट सी बातचीत में कुछ बड़े प्यारे से शब्द छिपे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं इस गाने के साथ, और उसके बाद आपके बहुत सारे कमेंट्स पढ़ेंगे जो दिल को छू लेने वाले भी हैं और गुदगुदाने वाले भी। तो आप जिस आवाज की परिकल्पना कर रहे थे उसकी बजाय दूसरी आवाज के साथ नीले रंग का गाना।

सिलसिला फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना। बहुत सारे श्रोताओं ने कहा है कि इस गाने को इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने भी गाया है, आराम से हम अमिताभ बच्चन वाला वर्जन सुनवा सकते थे, लेकिन हमने चुना लता मंगेशकर वाला संस्करण। एक क्यूट सी बातचीत वाला टेक्स्ट हमने आपको आज के इस कार्यक्रम के लिए दिया है, जिसमें से आपको शब्द चुनने हैं और ये अंदाजा लगाना है कि भाई आज के इस कार्यक्रम में किन किन शब्दों के साथ गाने लिए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इस टेक्स्ट में शामिल हर शब्द के साथ गाने लिए जाएं, और दिलचस्प ये है कि कुछ गुली भी हो सकती है, यानी जो गाना आप चुने हो सकता है कि वो शामिल ही ना हो, तो मजा आएगा इस अंदाजे के खेल में भी। लेकिन बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बात कही है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे तो लाल रंग पसंद है, ये रंग माता रानी चुनरी के रूप में चढ़ाया जाता है, और ट्रेन को आपात स्थिति में रोकना हो तो लाल कपड़ा लहरा कर रोका जाता है। जब इन्होंने रंग की बात कर ही दी है तो हम भी क्यों ना करें। चलिए आप सभी बताइए कि अगर कोई एक रंग चुनने को कहा जाए और फेवरेट रंग बताने को कहा जाए तो आप कौन से रंग को अपना फेवरेट रंग कहेंगे। यहां की जो बातचीत थी उसमें लड़का कहता है कि उसे नीला रंग पसंद है और लड़की कहती है कि उसे लाल रंग पसंद है। लड़का लड़की की बातचीत तो हो गई, लेकिन आप क्या कहेंगे, कौन सा रंग पसंद है आपको। और इसके अलावा एक श्रोता का कमेंट है, अनुमान अनुरूप अकल्पनीय आरंभ सुरीला सफर के पहले शुरुआती गाने में बहुत अच्छा लगा। एक और श्रोता लिखती है कि नीले से याद आया राजेश खन्ना फिल्म सफर में कहते हैं, जानती हो नीला प्रेम की परिभाषा है, क्या प्रेम रोक लेने में नहीं समझ लेने में होता है, ये तुम तब समझोगी जब मैं एक दिन तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। ये बहुत ही प्यारी बात लिखी एक श्रोता ने। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखती हैं कि यश चोपड़ा ने रात के बैकड्रॉप में दोनों किरदारों के बीच की केमिस्ट्री को बड़ी खूबसूरती से फिल्माया था। और इसके अलावा रेखा और अमिताभ हमारी फेवरेट हैं, ये बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता है, बल्कि कई श्रोता हैं, मुझे एक के बाद एक कमेंट्स नजर आ रहे हैं जो कह रहे हैं घोड़ा चतुर वाला गाना जरूर बजाइएगा, देखते हैं कार्यक्रम के सफर में क्या हो पाता है। और एक श्रोता है जिन्होंने बिल्कुल पूरी फेहरिस्त लिखी है कि इन शब्दों से ये गाने बजाए जाएंगे। 11 गानों और शब्दों की फेहरिस्त है, आपकी मेहनत को सलाम। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि मुझे तो हरा रंग पसंद है, सप्तरंगी, इंद्रधनुष, तितलियां, पता नहीं इन्होंने बहुत सारी अलग अलग शब्दों के साथ अपनी बात कही है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो आज के इस कार्यक्रम में कमेंट कर रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं, ईजादे इबारत कर गए जो आज पुनः पधारे हैं, सुरीला सफर में नई ऊर्जा फूंकने स्वयं पधारे हैं, शुक्रिया आपका। मेरे स्कूल के दिनों में सीनियर लड़के लड़कियां सन्यासी फिल्म के गाने पर डांस किया करते थे, पिछले कार्यक्रम में जो गाना बजा उसकी बात हमारे एक श्रोता ने की है। और इसके अलावा बहुत सारे और भी श्रोता अपनी बातें कर रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में मैं आपसे कुछ दिलचस्प सवाल भी पूछूंगा, और इन दिलचस्प सवालों के जवाब जब आप देंगे तो हम आपको थोड़ा ज्यादा पहचान पाएंगे, आपस में बात होगी, बात से बात चलेगी और कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। हमने आपसे पूछा है कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, आप में से सभी श्रोता अपनी अपनी बात कहें और सिर्फ रंग का नाम नहीं लिखें बल्कि अपनी बात भी कहें कि ये रंग क्यों पसंद है। तब तक इन साहब की बात सुनते हैं जो किसी एक रंग की बात कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर बताइएगा कि ये गाना किस फिल्म का है और किस कलाकार पर फिल्माया गया है।

भाई ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। इस गाने के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा कि प्रेमनगर फिल्म का ये गीत राजेश खन्ना और हेमा मालिनी। एक श्रोता लिखते हैं कि आसमानी रंग मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसी से समंदर में पानी का रंग बनता है और दूर पर्वत भी इसी रंग में दिखाई पड़ते हैं। एक और श्रोता है जो लिखती है कि हरे रंग की जहां बात है तो बचपन हरियाली भरे गांव में गुजरा, दूसरे नगर चलकर स्कूल जाते वक्त हरे भरे खेतों के बीच गुजरते रास्तों से जाना होता था, छुट्टी के दिन खेत में जाना होता था। प्रकृति के बीच जो पले बढ़े हैं उन्हें हरा रंग बहुत पसंद आता है। एक और श्रोता है जिन्हें हरा रंग पसंद है, सुबह उठकर सबसे पहले मैं अपने बगीचे के हरे पौधों को देखती हूं, आंखें खुश हो जाती हैं। एक और श्रोता है जिन्हें हरा रंग पसंद है, उनका कहना है कि हरे रंग की अपनी एक कहानी होती है, हर रंग की अपनी एक कहानी होती है, कोई खुशी का एहसास बन जाता है, कोई यादों का और कोई किसी अपने की मुस्कान का। शायद इसीलिए रंग कभी सिर्फ रंग नहीं होते, रंग तो सभी प्यारे होते हैं, बस देखना यह है कि हमारी आंखें किस रंग को अपना मानती हैं। बहुत ही प्यारी बात। एक श्रोता फिरोजी रंग को पसंद करती हैं, कहती हैं कि ये ईश्वर का रंग है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं कहना है, सिर्फ ये कि आपकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता है जिन्हें ब्लैक एंड व्हाइट पसंद है और उनका कहना है कि ब्लैक एंड व्हाइट रंग जल्दी मिल जाते हैं इसलिए इन्हें पसंद है। एक और श्रोता है काला रंग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। एक और श्रोता है जिन्हें हरा रंग पसंद है। एक और श्रोता है जिन्हें लाल रंग पसंद है। एक श्रोता है जिन्हें आसमानी रंग पसंद है। कितने श्रोताओं ने अपनी बातें लिख दी हैं और इन बातों में उनके जीवन की कुछ कुछ कहानियां भी छिपी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि ईश्वर द्वारा नवाज आपके मीठे स्वर और आपकी आवाज में शब्दों को खूबसूरत अंदाज में पेश किया था, आपका शुक्रिया। जरा नवाजी, हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत बहुत शुक्रिया।

श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि मुझे लेवेंडर कलर बहुत पसंद है, प्रकृति भी ये रंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाती है। मुझे लेवेंडर के फूल, ऑर्किड, जामुन और बैंगनी ये सारी छटाएं पसंद हैं इस रंग की। और एक श्रोता है जिन्हें काला रंग पसंद है, इसके साथ कुछ भी मैच कर लो मैच हो जाता है। पीले रंग को पसंद करने वाले भी बहुत सारे श्रोता हैं। और अब हम समुंदर की तरफ जाने वाले हैं, रंगों की इस महफिल से आगे बढ़कर समुंदर की तरफ चलते हैं और इस सवाल के साथ चलते हैं कि जब आपके शहर में बारिश होती है और बहुत अच्छी बारिश, पिकनिक का मौसम हो जाता है, तो अपने शहर के आसपास कौन सी ऐसी जगह आप जाते हैं जहां बहुत सारा पानी है। जैसे भोपाल के लोग बदबदा डैम की तरफ चले जाते हैं, जबलपुर के लोग सीधे जाते हैं भेड़ाघाट की तरफ, और इलाहाबाद और बनारस के लोग घाटों की तरफ जाते हैं। आप बारिश के दिनों में पिकनिक बनाने कहां चलते हैं? इस प्यारी बात के साथ समंदर की ओर रुख किया जाए। अनंत लहरें किनारों से टकराती चली जाती हैं, लेकिन थकती नहीं, सदियों से टकरा रही हैं, चलती चली जा रही हैं, हमें प्रेरणा देते हुए कि जीवन चलने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है। कहां कहां का समंदर आपने देखा और समंदर के किनारे खड़े होकर बैठकर आपके दिल में किस तरह के ख्याल, किस तरह के एहसास आए, ये भी बताइएगा।

क्या प्यारा गाना, और बहुत सारी श्रोताओं को इस गाने में बड़ा अच्छा लगा। एक श्रोता लिखती है कि लता जी कितना सुंदर गाती हैं और बोलती भी कितना मधुर हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि ये बारूद फिल्म का गाना है। एक और श्रोता की बात कि मैं समंदर के किनारे जाती हूँ, जब बारिश होती है तब उसकी लहरें भी काफी ऊंची होती हैं, लहरों की बूंदें जब चेहरे से टकराती हैं तो मन रोमांचित हो जाता है, बहुत खुशनुमा माहौल होता है। एक और श्रोता कहती हैं कि पुरी में समंदर के सामने बैठी रही, लहरों को आते जाते देखती रही। एक और श्रोता का कहना है कि नीले समुद्र की अथाह गहराई को देखकर लगता है मानो धरती ने अपने सारे सपने नीले आकाश की गोद में सजा दिए हैं। कितनी सुंदर बात लिखी है। एक और श्रोता है जिनका कहना यह है कि मैंने मुंबई, थाईलैंड, कन्याकुमारी, दुबई, न्यूजर्सी के अंतिम छोर का समुद्र देखा। एक और श्रोता है समुद्र केवल पानी का विस्तार नहीं बल्कि इंसानी भावना और अनंत गहराइयों का एक जीता जागता दर्पण है। इसकी हर लहर में एक कहानी, एक खामोशी, एक गहरा सुकून छिपा होता है। एक और श्रोता का कहना है कि बारिश के दिनों में हम अपने गांव चले जाते हैं जहां घर के आंगन से ही पर्वत और हरियाली देखकर मन खुश हो जाता है। एक और श्रोता है जिन्होंने गुहागर, रामेश्वर, कन्याकुमारी, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण और महाबलेश्वर में समुद्र का है, गोकर्ण वगैरह का समुद्र देखा। एक और श्रोता जिन्होंने ये लिखा है कि हमारे शहर के आसपास जब अच्छी बारिश होती है तो खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने डैम का पानी लबालब भर जाता है। मां नर्मदा अपने पूरे उफान पर होती हैं, डैम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और ये दृश्य बड़ा ही देखने लायक होता है। तेज वेग से बहता हुआ पानी, उसकी गूंज, प्रकृति का विराट रूप मन को रोमांचित कर देता है। इसीलिए जब डैम के गेट खुलने की खबर सुनाई देती है तो लोग भागते हैं उस नजारे को देखने के लिए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 1973 में मुंबई का समुद्र देखा था और अंधेरी से गेटवे ऑफ इंडिया तक पैदल गया था। ओहो हो हो, बड़ा लंबा सफर किया आपने। इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि कटक शहर के पास एक चिल्का झील है, पुरी, पारादीप, गोपालपुर, चांदीपुर जैसे समुद्र तट हमने देखे हैं। एक और श्रोता कहती है कि हमारे सूरत शहर में इस बार बारिश जो है वो तबाही लेकर आई है। समुद्र का कनेक्शन तो जीवन से है, समुद्र की गहराई और ऊंचाई और उस तरह से हमारे जीवन के उतार चढ़ाव सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। ये भी हमारे एक श्रोता की बात है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मुझे आसमानी रंग पसंद है, जलंधर सिटी में आज बादल नहीं छाए हैं, आसमान बिल्कुल साफ है। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि हमने कोंकण में तार कर ली, देवगढ़, गणपति पुले, आरे वारे, जितने भी किनारे मिले हैं सब देखाए हैं। एक और श्रोता है जिनका कहना ये है कि जब भी मैं कपड़े सिलवाता हूं तो ब्लू पैंट, व्हाइट शर्ट और ब्लू कोट सिलवाता हूं और मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं एयरफोर्स में हूं। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि उन्हें ब्राइट कलर्स बहुत ज्यादा पसंद हैं। और इसके अलावा एक श्रोता है जिनका कहना है कि हमारी नन्ही परी को पर्पल कलर पसंद है। फिर एक और श्रोता जिन्होंने कहा है कि वादियों में थोड़ा नीलापन, गेहूं की बालियों का सुनहरा रंग, थोड़ा तांबई नीम के पेड़ों में सांझ से थोड़ी लालिमा वाला रंग, एक भरा पूरा इंद्रधनुष टहूकता रहता है, मुझे ये सारे रंग बहुत पसंद हैं। बस इसी बात की डोर पकड़कर चलते हैं वादियों की तरफ ये गाना सुनने के लिए। आपको बताना है कि मुकेश के साथ इस गाने में जो गायिका है उनका नाम क्या है और ये गाना किस फिल्म का है, और साथ में ये कि आपको किस इलाके की वादियां बहुत पसंद हैं, आपके दिल के करीब हैं।

ये गाना कहता है वादियों में खो जाएं हम तुम, ये एक बहुत ही प्यारी बात है। और एक श्रोता ने बड़ी गहरी बात लिखी है, कहते हैं कि इंसानों में सबसे बड़ा रंग प्यार और मोहब्बत का रंग होना चाहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज महान नायक उत्तम कुमार ने इस संसार को अलविदा कह दिया था, उनकी याद में एक गीत जरूर सुनवाइएगा। तो भाई इस कार्यक्रम के बाद जब सदाबहार नगमे कार्यक्रम 2:30 से मैं आपको सुनवाऊंगा तो उत्तम कुमार जी के गाने जरूर होंगे। और ये यकीन रखिए कि विविध भारती किसी भी कलाकार की अवहेलना नहीं कर सकता, हम किसी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मनोज कुमार जी के गाने सुनवाए तो उत्तम कुमार जी के गाने भी आज बाकायदा सुनवाए जाएंगे। कुछ और श्रोताओं की बातें, मेघालय के चेरापूंजी की वादी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई। इसके अलावा कई श्रोताओं ने लिखा है कि यह आरती मुखर्जी की आवाज है। और इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने इस फिल्म के दूसरे गानों का भी जिक्र किया है, आरंभ नाम की यह फिल्म जिसमें सभी सुख दूर से गुजरे जैसे गाने हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि मैं राजस्थान में हूं, 8 दिनों से बादल मंडरा रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। एक श्रोता है जिन्हें अमरकंटक की वादियां बहुत पसंद हैं और उनका कहना है कि जब हम वहां गए तो वापस आने का मन नहीं कर रहा था। किसी को जम्मू कश्मीर के पुंछ की हरी भरी वादियां बहुत ज्यादा पसंद हैं। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग पसंद की जगह लिखी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर के सामने तापी नदी पूरे उफान के साथ बह रही है। और इसके अलावा कुछ श्रोता हैं जिन्हें सिक्किम, मेघालय, दार्जिलिंग और मसूरी की वादियां बहुत ज्यादा पसंद हैं। एक और श्रोता बहुत गहरी बात लिख रही हैं कि जिंदगी में सब रंग मिल जाएं तो जीवन खुशनुमा

हो उठता है, मगर सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसा हम चाहते हैं, ये बचकानी से थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं एक ऐसा गाना जो कम सुनाई देता है, लेकिन ये गाना एक बहुत ही प्यारे एहसास को बयां करता है। फिल्म का नाम बताइए।

क्या सुंदर गाना। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि भाई ये सन्नाटा फिल्म का गाना है, हेमंत दा और गुलजार साहब ये दोनों। और एक श्रोता लिखते हैं कि पूरी तरह से अनसुना गाना है। और विविध भारती की खासियत ये है कि वो हमें खो गए गुमनाम मधुर गीतों से रूबरू करवाती है। उसके अलावा एक श्रोता ये है कि विविध भारती पर सन्नाटा कभी होता नहीं और होना भी नहीं चाहिए। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि हमारे शहर अजमेर में कोई सागर नहीं लेकिन आना सागर झील है, और किनारे पर ऐतिहासिक बारादरी जहां हम बरसात में पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मिनाल का झरना बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और हम वहाँ जाते हैं। और इसके अलावा कुछ और श्रोताओं ने अपनी बात लिखी है। कुछ श्रोता ऐसे हैं जो मुंबई का सफ़र करने वाले थे लेकिन आज गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि हमारे शहर सूरत में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आप सभी अपने मौसम का मजा लीजिए, साथ में विविध भारती से जो गाने बज रहे हैं और जो बातें हो रही हैं इन बातों का आनंद लीजिए। अब समंदर और वादियों और इन तमाम बातों से होते हुए हम एक भोर की बात तक पहुंच गए हैं। ये गाना आपके लिए। और जैसे इस इबारत में लड़की लड़के से पूछती है तुम्हें भोर पसंद है या शाम, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपको भोर पसंद है दोपहर या शाम। और साथ में ये भी बताइए किस फिल्म का है ये गाना।

कुछ श्रोताओं ने जवाब लिखे हैं, आंचल फिल्म का ये गाना राखी राजेश खन्ना के लिए ये गाना गाती हैं। और इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि ये गाना हमने पहले कभी नहीं सुना। विविध भारती, ध्यान से सुनिए, ये गाना विविध भारती पर कभी कभी बजता है। मजरू सुल्तानपुरी की बोले, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे भोर बहुत पसंद है, क्योंकि सवेरे जब उठो तो उठते ही नई ताजगी, नई उम्मीद के साथ, जैसे खिड़की खोलते ही एहसास संध्या में नहीं होता। एक और श्रोता लिखते हैं कि बरसात में जब पानी ज्यादा गिरने लग जाए तो दीवारों में सीलन जमने लगती है, दीवारों के रंग निकलकर कैसे तो दिखने लगते हैं, रंग का मिजाज अलहदा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि हम तो मैदानों में रहते हैं जहां खेती बाड़ी होती है।

क्या आप बता सकते हैं कि अब जो गाना आ रहा है उसे किसने लिखा है और ये किस फिल्म का गाना है? और हाँ, आपको अगर शाम पसंद है तो वो शाम कहां बिताना पसंद है ये बताइएगा।

सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर की आवाजें, कानून और मुजरिम फिल्म का ये गाना, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि ये अहमद वसी का लिखा गीत है। बहुत सारे श्रोता ये भी जानते हैं कि अहमद वसी किसी वक्त में विविध भारती के उद्घोषक हुआ करते थे। अहमद वसी की याद इस गाने के जरिए। एक श्रोता है जो लिखती हैं कि शाम दिन का वो खूबसूरत पल है जब आसमान धीरे धीरे अपने रंग समेटता है और मन अपनी भागदौड़ लगता है। पूरी प्रकृति कह रही है कि अब कुछ पल सुकून से अपने साथ बैठो। एक श्रोता का कहना है कि संध्या का समय अच्छा लगता है, क्षितिज पर पिघलता सूरज और खामोश होती हवाएं दिल में एक अजीब सा सुकून भर देती हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि उन्हें शाम पसंद हैं, और एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि भोर और शाम का असली आनंद खुले आसमान के नीचे मिलता है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे शाम इसलिए पसंद है क्योंकि बच्चे और पति वापस आने वाले होते हैं, तो खाना क्या बनाऊं और जल्दी जल्दी खाना बनाकर सबके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता जो कहती हैं कि वो सुबह ज्यादा एक्टिव रहती हैं, हल्की सुबह का धुंधलका उन्हें बहुत पसंद है और जैसे जैसे शाम होने लगती है उनका दिल बेचैन होने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं।

0: भाई आसमां के नीचे ये प्यार का जहां बसाने के लिए चल पड़े हैं। एक श्रोता कहते हैं कि अगर किसी ने कहा कि अभी कहीं चलते हैं घूमने के लिए तो भैया हम अपने गांव जाना पसंद करेंगे। एक श्रोता है जो कन्याकुमारी जाना पसंद करेंगे। एक और श्रोता है जो सागर के किनारे किसी सनसेट पॉइंट जाना पसंद करेंगे। एक श्रोता है जो कह रहे हैं कि भोपाल में 10 से 15 किलोमीटर पर बहुत सारे डैम हैं, वहां जाना चाहिए। कंचनजंगा पर्वत किसी को जाना है। और कई श्रोता ऐसे हैं जिन्हें आमेर नाहरगढ़ के किले में जाना पसंद है, तो किसी को लास वेगास जाना पसंद है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि अगर मौका मिले तो इसी वक्त पचमढ़ी चला जाऊं। ओहो क्या बात है। और एक श्रोता है जिनको कहना है कि मौका मिले तो अभी मैं विविध भारती के कार्यालय आ जाऊं। क्या बात है, प्यारी बात। और इन सबसे होते हुए अब हम उदासी की राह पर चल पड़े हैं और चुप की राह पर चलते हुए ये गाना आपको बताना है कि किस फिल्म का गाना है और किसने लिखा है।
1: बस

0: एक श्रोता लिखते हैं कि भाई कैसे 50 मिनट बीत गए हैं, पता ही नहीं चला, और तकरीबन आखिरी गाने की तरफ आ गए हैं। एक श्रोता है जिन्हें घोड़ा चतुर वाले गाने का इंतजार है, लेकिन आज शायद वो गाना आ नहीं पाएगा। भाई सब गाने कैसे बजाएं, क्योंकि कार्यक्रम का समय भी तो सीमित है, और आखिरी में अगर ये बात हो तो ज्यादा अच्छा रहता है।
1: बात नजरों की,
0: इस बात के साथ कि आज इस वक्त इस पल कौन है जो आपसे रूठा हुआ है और आपको मनाने की जिम्मेदारी दी गई है।

भाई, बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं और कार्यक्रम का ये जो सफर है अब अपने आखिरी मकाम पर पहुंच गया है, तो बड़ा मुश्किल है कि कौन से कमेंट्स शामिल करें और कौन से छोड़ें, पर ये वादा करते हुए जा रहे हैं कि आपके सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं और यहाँ से निकलने के बाद भी पढ़ेंगे, तो ये समझिएगा कि सभी कमेंट्स पर हमारी नज़र ज़रूर पड़ती है और कई लोगों को आज का ये कार्यक्रम पसंद आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी में सुर घोलते रहिए, विविध भारती के संग रहिए, जैसे कि मैं बोलता हूँ हमेशा आपसे कि दिन की इस भागदौड़ में जहाँ कहीं भी रहिए, बने रहिए विविध भारती के संग। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। प्रतीक्षा समाचारों की।

0: The Sensex slipped 403 points to 75,989 and the Nifty fell by 116 points to 23,754. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for strict action against paper leaks, assures early passage of bill for proposing fast-track courts and stricter punishments to culprits. Second round of talks between government and CJP begins at Constitution Club over NEET paper leak row. Showdown continues in Parliament over NEET paper leaks. Lok Sabha adjourned for the day amid opposition uproar. Supreme Court directs Centre and NTA to file detailed affidavits on progress made in implementing reforms after NEETUG paper leak. India calls out United Nations for ignoring repression in Pakistan-occupied Kashmir, accuses Islamabad for systematically crushing rights of the people. IMD forecasts very heavy to extremely heavy rainfall over East Rajasthan, Gujarat and Madhya Maharashtra today, and India's Anahat Singh enters semi-finals of World Junior Squash Championships. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पेपर लीक घटना के बाद ढाई महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमनकारी गतिविधियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय की सराहना की है श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी
3: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं चल रहे हैं उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा तो युवाओं को न्याय मिलेगा
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को देश के शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर बताया है स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत जारी है ये बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास आशुतोष रांका अभिजीत दिपके और दीपक बलियान

0: ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
1: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टी के MPs भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
0: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
2: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
0: करगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है।
3: On this occasion, this house pays its respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces.
0: राज्यसभा में भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा विपक्ष नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगे हैं जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट UG पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

0: के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में धमकी भरे बयान देने के वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो फर्जी है और एआई से बनाई गई है। इकाई ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के एक वीडियो को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और डीप फेक बताया है। वीडियो में दावा किया गया है जो गलत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा जारी है। पहंडी अनुष्ठान पूरा हो चुका है और तीनों देवी देवताओं को विधिपूर्वक उनके अपने अपने रथों पर विराजमान कर दिया गया है। अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
1: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पहंडी रस्म सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और इन भाई बहन देवताओं को बाहुड़ा यात्रा श्री जगन्नाथ मंदिर वापसी की शुभ यात्रा के लिए उनके रथों पर विधिवत विराजमान किया गया है। श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक फैली पूरी ग्रांड रोड लाखों भक्तों से खचाखच भरी हुई है। वापसी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी माँ मंदिर पर पारंपरिक रूप से रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार, निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
2: India-EU Free Trade Agreement is an important milestone in India-EU strategic partnership. Trade and economic cooperation are central to the contemporary partnership. With a combined market of nearly 2 billion people and an economic zone of around $25 trillion, the India-EU FTA is among the most significant economic partnerships in the world.
0: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। ये टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989 जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिस्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समेह से खेलेंगी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले 3 दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट।
3: दक्षिण गुजरात में दो दिन तक भारी बारिश के बाद आज उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। पिछले 6 घंटों में उत्तर गुजरात के वाव थराद और पाटन जिलों में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह से अब तक राज्य के 239 तहसील में बारिश हुई है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अहमदाबाद, नवसारी और वलसाड में NDRF SDRF की कुल 49 टीमें और भारतीय सेना की 6 टीमें तैनात की गई है। दूसरी ओर राज्य में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और CJP के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे।

अमानुष फिल्म का गीत आपने सुना, इंदीवर के बोल थे, श्यामल मित्रा का संगीत था और ये गाना हमने उत्तम कुमार की याद में आपको सुनवाया। आज उत्तम कुमार की पुण्यतिथि है। छोटी सी मुलाकात फिल्म का ये गाना सुनिए, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजी। उत्तम कुमार इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे।

छोटी सी मुलाकात फिल्म का ये गाना हजरत जयपुरी ने लिखा था, संगीत शंकर जयकिशन का था। इंदीवर के बोल श्यामल मित्रा का संगीत फिल्म

0: किया है।
1: डॉक्टर विद्या फिल्म का गीत था मुकेश की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था सचिन देव बर्मन का। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म शहीद से है, गीत संगीत प्रेम धवन का।

0: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की आज बातचीत हुई। ये बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हुई। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दीपके और दीपक बालियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई थी। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद में आज लगातार पांचवें दिन भी हंगामा जारी रहने पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री रिजिजू ने कहा कि नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करने वाले प्रमुख कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी चर्चा की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि आज मंत्रिमंडल बैठक में पेपर लीक के लिए सख्त उपाय और मजबूत कानून लाने पर निर्णय लिए जाएंगे। दोनों सदनों में आज करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान करने वाले शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। पीठ ने कहा कि वो इस मामले पर कड़ी निगरानी रखेगी और नियमित रूप से इसकी समीक्षा करती रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानैनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता। सुरक्षा परिषद की खुली बहस में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भ्रामक बयानबाजी के बजाय अपनी आंतरिक चुनौतियों के समाधान पर ध्यान देना चाहिए। यह टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिज्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समेह से खेलेंगी। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले

दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Egypt's Habiba Rizk 11-7, 11-5, 6-11, 11-9 in the quarterfinals. With this win, Anahat has become the first Indian to reach back-to-back semifinals in the World Juniors and is a firm favourite to win the title. And with that, we end this news bulletin.
1: Ian Akashvani Tura. Nak simang Delhi stationoniko Hindi aru English koborangko kna soaha. Somoy da awat tamni gtam baji minit kung waha aru ya stationoniko program rangko kamatani somoy ba yanon bot naha. Da aw dikdiksani jamano nak simang Delhi oniko watat skaing gpa dengtang program rangko rechasa sa point sni meter bano FM channel oniko kna suna matgen. Kna tumsoing gpa sakantikon salam. Yan Akashvani Tura.
2: बहुत अच्छी ईश्वर बनाकर भेजता है तो कई लोगों की सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है कईयों की सूंघने की शक्ति कई लोग बहुत अच्छा गाते हैं आप में क्या गुण है
3: दीदी हम संगीत सीखते हैं दीदी गाना गाते हैं दीदी वही सीख रहे हैं संगीत
2: अभी संगीत कितने सालों से आप सीख रही हैं
3: दीदी हम तो मतलब जो पहली मैं यहाँ पे सागर में पंडापुरा में लिया था दीदी एडमिशन
2: जी
3: पांचवी तक हमने यही सागर में पढ़ाई की है फिर पांचवी के बाद गए हैं दीदी चित्रकूट वो है हमारे जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी
2: तो उनसे आप संगीत सीख रही हैं अभी
3: जी दीदी
2: तो ये गुरु शिष्य परंपरा से आपने सीखना शुरू किया है या आप संगीत विशारद कर रही हैं
3: दीदी हमें तो बचपन से शौक था तो दीदी वही उन्हीं को हम गुरु मानते हैं और उन्होंने दीदी हमें ये शिक्षा दी है और वही सिखाते हैं दीदी
2: यहाँ आपको गुरुकुल में रहते हुए ही पढ़ाई करनी होती है
3: जी दीदी वहीं पे रहते हैं दीदी हॉस्टल है वहीं पे चित्रकूट में
2: फिर घर कितने कितने अंतराल पर जाती हैं आप
3: दीदी जैसे रक्षाबंधन है दीपावली है मकर संक्रांति है
2: मतलब जब कोई त्योहार होता है तो उस वक्त आप घर जाती हैं यहाँ से छुट्टी लेकर
3: जी दीदी
2: अच्छा तो आप बता रही हैं भारती कि आपने संगीत की शिक्षा यहाँ ली है तो हमें कुछ गाकर सुनाएंगी
3: जी दीदी

0: बहुत सुंदर गाती हैं भारती आप, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। और संगीत एक ऐसा माध्यम है जो खुद को खुशी देने के साथ साथ औरों में भी खुशियां बांटता है,
1: दीदी
0: और आप इतनी सुंदर विधा से जुड़ी हुई हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। आज
1: जी,
0: आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं भारती, ये बताइए हमें।
1: मूवी का नाम है रंग
0: जी,
1: और गाने के बोल है तुमने देखी मेरी आंखें।
0: तुम्हें देखे मेरी आंखें,
1: जी
0: इसमें क्या मेरी खता है।
1: जी
0: बहुत खूबसूरत गीत चुना है भारती आपने, और हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सखियों के फोन कॉल का सिलसिला। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमारे साथ कॉल पर जुड़ी है, नाम बताइए अपना।
1: जी, मेरा नाम मनीषा शर्मा है।
0: मनीषा जी, आपने कॉल कहाँ से किया है हमें?
1: मैं गुलाबी नगरी से बात कर रही हूँ, जयपुर से।
0: जयपुर, गुलाबी नगरी। इसे गुलाबी नगरी क्यों कहती हैं, बताइए।
1: जी, ऐसा है कि ये जो नगरी है, यहाँ पर जो पुराने घर और जो बाजार मिलता है वो सारा पिंक कलर से पेंटेड है, तो इसलिए इस नगरी को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है।
0: वहाँ सारे बाजार लगभग एक जैसे ही लगते हैं, अगर वहाँ खो जाएं तो रास्तों की पहचान का कोई तरीका होता है क्या, बताइए।
1: देखिए, ये जो नगरी है ये बहुत खूबसूरत है ना,
0: बिल्कुल।
1: और जिस तरीके से ये गुलाबी है, यहाँ के लोग भी बिल्कुल गुलाबी यानी कि पिंक कलर, जो कि आंखों को बहुत ज्यादा सुकून देता है, एक कामनेस है इस कलर में ना, तो लोग भी गुलाबी रंग की तरह बेहद खूबसूरत और बेहद काम है। तो अगर आप खो जाते हैं तो लोगों की मदद से आपको रास्ते पता पड़ जाएंगे। इसके अलावा हर रास्ते के बाहर उसका नाम जो है वो संगमरमर के पत्थर पर खुदाई करके लिखा गया है।
0: और मनीषा जी, अपने बारे में बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: देखिए, मैं एज अ प्रोफेसर कार्यरत हूँ और मैं बच्चों को जर्नलिज्म पढ़ाती हूँ, बैचलर्स और मास्टर्स।
0: क्या बात है।
1: इसके अलावा मुझे किस्सा गोही करने का बहुत शौक है, शायरी
0: अच्छा,
1: करने का शौक है, कविताएं लिखने का शौक है।
0: अभी कोई लिखी हुई आपकी पंक्तियां अगर आपको याद हैं, या कोई शेरो शायरी जो आपने लिखी है, आपकी स्वरचित कोई रचना हम सुनना चाहेंगे।
1: जी, मैं सुनाना चाहूंगी। कभी तो मिलेगी मोहब्बत की मंजिल, ये दिल का मुसाफिर चली जा रहा है तूफान में कश्ती मगर दूर साहिल, कि दिल का मुसाफिर चले जा रहा है।
0: बहुत
1: इतनी
0: बहुत
1: प्यार।
0: सुंदर। और आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं फिल्म मैंने प्यार किया से आया मौसम दोस्ती का गाना सुनना चाहती हूँ।

0: हेलो सहेली.
1: हेलो सहेली,
0: बताइए, हमारे साथ कौन सी सहेली जुड़ी है इस समय लाइन पर?
1: मैं अलका श्रीवास्तव,
0: अलका श्रीवास्तव जी, आप कौन से शहर में रहती हैं?
1: ग्वालियर के पास एमपी शिवपुरी।
0: शिवपुरी में रहती हैं.
1: जी हाँ जी हाँ।
0: अलका जी, आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ। वैसे पहले मैं टीचिंग जॉब में थी, अब रिटायरमेंट हो गई हूँ।
0: अच्छा, तो रिटायर होने के बाद जो आपका खाली समय है वो कैसे गुजरता है?
1: बस घर के कामों में निकाल देते हैं, सारा काम होता रहता है।
0: अच्छा, जिन दिनों आप काम किया करती थी, जब आप जॉब पे थी और टीचर का काम करती थी, तो एक शिक्षिका होते हुए क्या आपको समय मिल पाता था रेडियो सुनने के लिए?
1: हाँ बिल्कुल, 4 बजे मैं घर आती थी तो आके घर में बैग रख के सबसे पहले मेरा रेडियो ऑन होता था। हालांकि ये रेडियो से जुड़ा तो मेरा जन्म के बाद से जो आंखें खोली समझदारी हुई तब से जुड़ी हुई है। मेरे घर में रेडियो चलता ही रहता था, बचपन से ही सुना है रेडियो।
0: और आप जैसे श्रोता ही हैं जो इसको और लोकप्रिय बनाते हैं. और आज बताइए अलका जी, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं लाल दुपट्टा मलमल का उसका सुनना चाहती, क्या करती थी साजना।
0: जी, आपको सुनवाएंगे हम क्या करते थे साजना, तुम हमसे दूर रह के.

0: हेलो सहेली,
1: हेलो मैडम,
0: हमारे साथ कौन सी सखी इस समय बात कर रही हैं? नाम बताइए अपना।
1: मैं शारदा भोयर बात कर रही हूँ। मुझे मैम शेषनाग फिल्म का गाना सुनना है।
0: शारदा जी, आपकी पसंद का गीत तो हम सुनवाएंगे, लेकिन आप पहले ये तो बताइए कि आप कौन से शहर से बात कर रही हैं हमसे।
1: हम जिला यवतमाल से ही बात कर रहे हैं
0: हाँ, अपने बारे में बताएंगे हमें कि आप क्या करती हैं?
1: मैम। हम तो बस घर का काम करते हैं, हम
0: अच्छा,
1: ब्लाइंड है।
0: अपने आप को खुश
1: गाना
0: रखने के
1: सुनना
0: लिए आप
1: आपका,
0: क्या करती हैं शारदा जी?
1: हमें आप खुश रखने के लिए बस मनोरंजन, गाना सुनना, घर के काम करना
0: अच्छा,
1: यही करती है।
0: घर के काम करने में कभी कोई दिक्कत आती है आपको या आराम से आसानी से हो पाता है आपसे?
1: आराम से हो पाता है मैडम।
0: आप किसी की मदद लेती हैं या खुद से कर लेती हैं सब?
1: नहीं मैम, घर में किसी की मदद नहीं लेती, अनोखी जगह में जाएंगे तो मदद लेनी पड़ती है।
0: अच्छा, किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं शारदा जी?
1: क्लासिकल गीत, मीडियम गानों का संगीत सुनना पसंद करते हैं मैम।
0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं बताइए, आपकी फरमाइश पूरी करने की हम जरूर कोशिश करेंगे।
1: शेषनाग फिल्म का फेर मिलन के गीत, रे मितवा, प्यार भरे गीतों का मौसम लेकर आई प्रीत।
0: आपको सुनवाते हैं शेषनाग फिल्म का आपकी पसंद का गाना।

0: सखियों अंतराल हुआ पूरा और फिर से हम जुड़ गए हैं अपनी सखियों के साथ। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: हाँ बताइए, आप कौन सी सखी हैं, किन से हम बात कर रहे हैं?
1: मैं युतिका नागर बात कर रही हूँ जयपुर से।
0: जयपुर से आप बात करिए, अपना नाम फिर से बताएं हमें।
1: युतिका नागर।
0: युतिका नागर, बहुत यूनिक नाम है और ये नाम आज मैं पहली बार सुन रही हूँ, तो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि आपके नाम का मतलब क्या होता है।
1: मेरे नाम का मतलब होता है जूही।
0: जूही?
1: जूही एक, हाँ जूही जो पौधा होता है ना
0: हाँ
1: जूही
0: जी,
1: का,
0: जूही का फूल
1: वो
0: बहुत सुंदर होता है।
1: तो वो मेरे नाम का अर्थ है।
0: आपके परिवार में ऐसे कौन से सदस्य थे जिनको संस्कृत की भी जानकारी थी और इतना सुंदर नाम चुनके उन्होंने आपका रखा?
1: देखिए मेरे परिवार में जो मम्मी, मेरी मम्मी की तरफ की जो लोग रहे वो बहुत ही अच्छे से एजुकेशन लिए थे। उस जमाने में एमए बीएड करे हुए लोग थे,
0: अच्छा,
1: तो उन्होंने ही मेरे नाम का ऐसा उच्चारण रखवाया कि ऐसा हो कि बहुत यूनिक रहे। कहते हैं ना, नाम से ही आदमी की पहचान होती है, तो मेरा नाम यूनिक रखा और मेरे में कला ही जो कहें, बातें करना, सब चीजें कुछ ऐसी आए जिससे कि मैं यूनिक लगूं।
0: आपका शहर बहुत सुंदर है जिसे गुलाबी नगर कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसको गुलाबी नगर क्यों कहते हैं? और जहां तक मैंने जयपुर के बारे में सुना है, इसे किलों की नगरी भी कहते हैं।
1: हाँ, किलों की नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जितने मॉन्यूमेंट्स बने हैं तो यहाँ पे जो राजघराने के लोग थे जो आज भी उसी लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ में अगर आप देखते हैं तो उन्होंने इतना अच्छा मेंटेन कर रखा है जिससे कि टूरिस्ट बहुत आते हैं जयपुर में, बहुत टूरिस्ट आते हैं। आप कभी भी जाए तो हवा महल देखो, यहाँ का नाहरगढ़ देखो, यहाँ का जंतर मंतर, यहाँ का सिटी पैलेस, यहाँ के मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको देखने के लिए लोग आते हैं।
0: युतिका जी, आप क्या करती हैं?
1: जी मैं एक बैंक के साथ काम करती हूँ,
0: अच्छा, किस तरह का काम होता है आपका बैंक से जो आप जुड़ी हैं?
1: फ्रीलांसिंग लोगों के साथ ही काम करती हूँ।
0: काम करते हुए आप समय निकाल पाती हैं रेडियो सुनने के लिए?
1: बिल्कुल, रेडियो के बिना जीवन कहाँ है।
0: रेडियो सुनने का शौक सिर्फ आपको ही है या आपके परिवार में और भी कोई है, और आपको ये शौक कैसे लगा इसके बारे में भी जानना चाहेंगे।
1: मेरी मदर का नाम है उषा नागर, ठीक है, वो बहुत अच्छी अदाकारा रही। उनके यहाँ से ही मान लीजिए कि मुझे जो है इसमें शौक आया कि मैं म्यूजिक सुनू, म्यूजिक गाऊं, मैं खुद गाने लगी, मैं खुद गुनगुनाने लगी, और यूँ कहीं किसी को संगीत के लिए चुनना नहीं पड़ा। रेडियो पे गाने सुनकर ही मेरी आवाज जो है, लोग मुझे कहते थे कि आप गाना कैसे गा लेती हो, वही सीखा है। मैं कहती हूँ उनको कि रेडियो पे सुनते हैं इतना तो गाना तो आएगा।
0: तो अब हमें भी बड़ी उत्सुकता हो रही है और हम भी चाहते हैं कि आवाज आपकी थोड़ी सी हम सुन लें, और कौन सा गीत गुनगुनाकर हमें बताएंगी आप?
1: जिसकी फरमाइश के लिए मैंने आपको कॉल लगाया है
0: तो
1: वो
0: बताइए,
1: गाना
0: आपकी पसंद
1: है
0: कौन से गीत की है, वही गीत हमें गुनगुनाकर बताइए।
1: महल फिल्म का गाना है।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। कौन सी सखी हमसे जुड़ी है कॉल के माध्यम से?
1: मैम, मेरा नाम मनीषा प्रजापति है, जलंधर
0: मनीषा जी, आपने कहाँ से कॉल लगाया है?
1: सिटी।
0: मनीषा जी, अपने बारे में
1: मैम,
0: बताइए थोड़ा सा कि आप क्या करती हैं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: तो पूरा दिन आपका किस
1: हाँ,
0: तरह गुजरता है?
1: घर के काम करते हैं, थोड़ा टाइम मिलता है तो थोड़ी बहुत सिलाई कर लेती हूँ, चले
0: ऐसे कौन से
1: जाते
0: काम
1: हैं।
0: हैं जो आपको बहुत खुशी देते हैं, जिन्हें आप बहुत करना पसंद करती हैं?
1: सर मैम, खाना बनाना। हाँ
0: खाना बनाना ऐसा चीज है जो आपको खुशी देता है?
1: जी मैम,
0: और आपके पतिदेव को या आपके बच्चों को आपके हाथ का खाना जरूर पसंद आता होगा, तो कौन सी ऐसी चीज है आपकी बनाई हुई जिसकी फरमाइश आपसे सबसे ज्यादा की जाती है?
1: मैडम खीर।
0: तो खीर बड़ी अच्छी बना लेती हैं आप।
1: हाँ जी मैम,
0: अच्छा, आप बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मन फिल्म का मैम,
0: मन फिल्म का कौन सा गीत आपको सुनवाए हम?
1: मेरा मन क्या तुम चाहे, मेरा मन, यही मैम।
0: बहुत सुंदर तरीके से आपने गुनगुनाकर बताई है अपनी पसंद। आपको सुनवाते हैं मन फिल्म का आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, बताइए कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं।
1: मैं सानिया गाल से बोल रही हूँ, जिला सहारनपुर के पास से। हम
0: सानिया जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: घर में काम करते हैं, घर का ही।
0: घर के कौन से काम आपको करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
1: मैम सबसे ज्यादा तो मैं खाना बनाना अच्छा लगता है।
0: तो हम कई बार खुशियां ढूंढते हैं तो अपनी पसंद की चीजों में हमें खुशियां मिल जाती हैं, तो आपको अपने
1: जी
0: रसोई घर में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है।
1: मैम, मुझे सबसे ज्यादा मीठा बनाने का शौक है। जी
0: तो कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद की जाती है आपके परिवार में?
1: मैम, टुकड़े बनाते हैं हम सूजी के। सूजी
0: टुकड़े? किस चीज के टुकड़े बनाती हैं?
1: के बनाते हैं, सूजी
0: अच्छा,
1: को भून कर। जी
0: सूजी के टुकड़े
1: जी
0: बनाती हैं।
1: जी मैम। और मैम आटे की भी बना लेते हैं हम मिठाई।
0: आटे की मिठाइयां भी बना लेती हैं।
1: जी आटे की भी बना लेती हूँ।
0: तो ये घर की जो बनी मिठाइयां होती हैं, इनमें कई बार हमें पूरी शुद्धता और पूरे न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाते हैं। तो आटा, सूजी, ये वो चीजें हैं जिनका कोई नुकसान भी नहीं होता, जबकि बाजार में जो
1: जी मैम,
0: मावे की मिठाइयां मिलती हैं
1: जी मैम,
0: उनमें कोई भी
1: जी मैम,
0: मिलावट होने की संभावना बनी रहती है।
1: जी मैम,
0: तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने परिवार को अपने हाथों से बनाकर उनका मुंह मीठा
1: जी मैम,
0: करवाती हैं।
1: जी मैम, मुझे खुशी मिलती
0: अच्छा, और आपको किस तरह
1: है।
0: का
1: जी
0: संगीत सुनने में खुशी मिलती है? तो आप जो आज गीत सुनना चाहते हैं वही आपको सुनवाया जाएगा।
1: जी मैम, मेरे फिल्म का नाम रहेगा जीने नहीं दूंगा। बोले तुम याद ना आया करो, याद आने से पहले आ जाया करो।
0: सानिया जी, आपको सुनवाते हैं जीने नहीं दूंगा फिल्म का आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: हम जानना चाहेंगे कि इस समय हमारे साथ कौन सी सहेली बात कर रही हैं।
1: मैं जयश्री गुड़े बात कर रही हूँ महाराष्ट्र से। अमरावती।
0: जयश्री जी, महाराष्ट्र में कौन से शहर में आप रहती हैं बताइए। अमरावती से आप बात कर रही हैं। आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपके शौक क्या हैं, आप क्या करती हैं, और खुश रहने के लिए सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है जो आपको खुशी देता है।
1: मुझे शौक है पढ़ने का, किताब पढ़ने का,
0: किस तरह की
1: और
0: किताबें पढ़ती हैं?
1: खुशी के लिए मैं रेडियो सुनती हूँ मेरा।
0: अच्छा, तो यानी कि शौक है आपको किताबें पढ़ने का और अपने आप को खुश रखने के लिए आप रेडियो सुनती हैं।
1: हाँ।
0: आप किस तरह की किताबें पढ़ती हैं?
1: मैं किताबें हिंदी, इंग्लिश, मराठी सभी पढ़ती हूँ। वो स्टोरी और कोई कथा वेथा होती है।
0: तो जो कहानियां आती हैं वो आपको प्रेरित करती
1: वो
0: हैं।
1: हाँ
0: और रेडियो पर किस तरह के कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: मैडम, सखी सहेली
0: सखी सहेली आपका पसंदीदा कार्यक्रम है
1: हाँ सबसे ज्यादा।
0: सबसे ज्यादा? और उसके बाद में और कौन से कार्यक्रम हैं जो सखी सहेली के अलावा सुनना पसंद करती हैं आप?
1: वैसे तो सभी कार्यक्रम सुनती हूँ और सभी अच्छे लगते हैं। जैसे वो कहानी आती है सोमवार के दिन, वो कहानी और ये मुलाकात, उजाले, उनकी यादों की, सितारे,
0: अच्छा,
1: सभी कार्यक्रम बहुत पसंद है। इसीलिए
0: आपके परिवार में और कौन कौन
1: सब
0: हैं?
1: हम दोनों ही है।
0: आप और आपके पति देव।
1: हाँ, हम दोनों
0: तो आज आप,
1: ब्लाइंड है मैडम।
0: अच्छा, आप दोनों ब्लाइंड हैं। आपके पति क्या करते हैं?
1: वो कुर्सी बनाते हैं, वो केनिंग की कुर्सी होती है ना।
0: ट्रेनिंग की कुर्सियां बनाते हैं वो।
1: हाँ, और वो नहीं वो खत्म होगी तो फिर वो ट्रेन में बिजनेस करते हैं, जैसे कि ऑरेंज गोली, शेंगदाना, मूंगफली वो बेचते हैं।
0: अच्छा, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं जयश्री जी?
1: मैं गाना सुनना चाहती हूँ मदर इंडिया का, वो दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा,
0: जीवन है अगर जहर
1: जिंदगी
0: तो पीना ही पड़ेगा।
1: पीना ही पड़ेगा।
0: आपकी पसंद बहुत खूबसूरत है। मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्कार, मेरा नाम चंचल शर्मा है, मैं जयपुर से बात कर रही हूँ।
0: तो आपने बताया आप चंचल शर्मा हैं और इस समय आपकी बात हो रही है चंचल वर्मा से, तो दो चंचल सखियां बात कर रही हैं इस समय।
1: जी।
0: चंचल जी अपने बारे में बताइए।
1: वैसे तो मैं परिष्कार कॉलेज में लेक्चरर हूँ
0: जी
1: और वैसे रंगमंच भी करती हूँ, राइटर हूँ और रेडियो सुनने का शौक है।
0: मतलब आप तो मल्टीटास्किंग महिला हैं, बहुत सारे काम करती हैं आप, रंगमंच से भी जुड़ी हैं आप, पत्रकारिता भी करती हैं आप, अलग अलग माध्यमों से जुड़ी हुई हैं।
1: जी।
0: इन सब में आपका एक पसंदीदा काम कौन सा है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है?
1: मैम, मुझे अपनी कविताएं लिखते वक्त रेडियो सुनना बहुत पसंद है।
0: तो अपनी कोई रचना हमें सुनाइए, कुछ पंक्तियां अगर आपको याद हों।
1: जी, मैं बिल्कुल सुनाना चाहूंगी। ता उम्र है मुझे सीखना, मेरा सीखना कभी खत्म ना हो, और मुझको तो सब है आ गया, ऐसा मुझे भरम ना हो। मुझे बनना नहीं सागर ठहरा, ठहराओ मौत की निशानी है, मुझे बहती सी एक नदी रखना, जिसका बहना कभी खत्म ना हो, और मुझको तो सब है आ गया, ऐसा मुझे भरम ना हो।
0: बहुत प्रेरणादायक पंक्तियां हैं आपकी और निरंतरता की बात इसमें कही गई है कि कहीं रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है और यही जीवन की सच्चाई है।
1: जी
0: क्योंकि जो थम गया, अगर पानी भी रुक जाता है तो वहां काई जम जाती है।
1: जी और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति इस जीवन में सतत एक विद्यार्थी है जब तक कि उसकी सांस चल रही है।
0: बिल्कुल, और सीखते रहना चाहिए। जिस दिन हमें लगता है कि हमें सब आ गया ना, जीवन कहीं रुक सा जाता है और ये
1: बिल्कुल,
0: अहंकार कहीं ना कहीं हमें पतन की ओर ले जाता है।
1: और मुझे लगता है मैम कि हम सब में ये जज्बा होना चाहिए कि चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई हमें कुछ सिखा के जाता है, कोई सीख दे के जाता है, तो हमें दिल से उसका धन्यवाद जरूर करना चाहिए।
0: बिल्कुल, और आज आपकी बातें हमें बहुत सीख दे रही हैं। मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं हमें ये बताइए, क्योंकि आप तो खुद ही इतनी कविताएं लिखती हैं तो मुझे लगता है आपकी पसंद भी बड़ी अच्छी होगी।
1: मैं, किनारा फिल्म का एक गीत है, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे।
0: आपकी आवाज भी बहुत खूबसूरत है और ये हम सभी को याद रहेगी। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का किनारा फिल्म का।

0: आज कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद, और वे सखियां जिनका कॉल अभी तक नहीं लगा है वे निराश ना हो, आप जरूर कोशिश करती रहिए, क्या पता अगली बार आपकी ही बारी हो और आपका कॉल कनेक्ट हो जाए। जिन सखियों ने आज हमसे बात की उनसे हमारा अनुरोध है कि अगले 2 महीने तक आप कॉल ना करें ताकि अन्य सखियों को भी कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। पुरुष श्रोताओं से हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार के दिन हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वे कॉल ना करें, इससे लाइनें व्यस्त हो जाती हैं और कॉल कनेक्ट करने में सखियों को परेशानी हो सकती है। सखियों अब आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए 400-24662। एक अन्य नंबर है 28670288। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 4002466 2। एक अन्य नंबर है 28670288। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।

0: जल्दी बुलबुल, कोई और भी कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
1: अरे ललन मियां आप हैं? काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, गीतों भरी कहानी, बस कुछ ही पलों के बाद। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए रिद्धि चौरड़िया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। सपनों की नगरी मुंबई, यहाँ कुछ लोग अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा करने के लिए भागते हैं, तो कुछ खुद को भूलकर कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ उठाए उन्हें निभाने के लिए अपनी जिंदगी भी भूलकर जीते हैं। सुधा भी उनमें से ही एक है। भाई के जन्म के समय माँ दुनिया छोड़ गई और तभी से सुधा के नन्हे कंधों पर छोटे भाई बहन और घर की जिम्मेदारी लद गई।

जाती। वो बस खुद से यही कहती कि एक दिन सब ठीक हो ही जाएगा। लेकिन एक रोज जब वो मुंबई की भारी बारिश में भीगते हुए किसी तरह ऑफिस पहुंची, तो मैनेजर ने उसके हाथों से फाइल लेकर सीधे शब्दों में उसे कहा, मिस सुधा, अब आपको आने की जरूरत नहीं है, हमें आपके जैसे लोग नहीं चाहिए। सुधा कुछ पल के लिए खड़ी रह गई, आंखों से आंसू बहने ही वाले थे कि वो चुपचाप ऑफिस से निकल गई। आसमान में बादल गरज रहे थे और उसके मन में भी लाखों सवालों की गरज जारी थी कि अब सब कैसे होगा। तेज बरसती बारिश उसके आंसुओं को भी बहाती ले जा रही थी। उसने भगवान का धन्यवाद किया कि कम से कम आज इस बारिश के कारण उसे आंसू छुपाने की जरूरत तो नहीं पड़ी।

ये गीत सुधा को पसंद था क्योंकि नायक मरने को जीने से बेहतर बताता है। लेकिन ये बात कहते हुए वो बहुत सकारात्मक ही नजर आता है क्योंकि वो भी जीवन ही चुनता है। सच भी है, जीना कोई आसान काम थोड़ी है। अगले कुछ दिनों तक सुधा नौकरी की तलाश में यहां से वहां ठोकरें खाती रही। अब नौकरी जल्द पाना जरूरी था क्योंकि पापा की पेंशन तो उनके इलाज के लिए ही कम पड़ती थी। उस पर भाई बहन की फीस और घर के बाकी खर्चे भी सिर बाए खड़े रहते। नौकरी ढूंढने की इस कवायद में एक शाम सुधा बहुत थक गई तो मरीन ड्राइव पर जाकर बैठ गई। सामने उफनता समुद्र था और डूबता हुआ सूरज, हवा में हल्की नमी थी और उसके मन में ढेरों सवाल। थोड़ी देर चुप बैठकर वो सामने ताकती रही, फिर धीमे से उसने कहा, भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो, मैंने ऐसा क्या किया है। उस रोज खुद को संभाल कर जब वो घर पहुंची तब भी उसकी मायूसी परिवार से छुपी नहीं थी। उसे छोटे भाई सौरभ ने हाथ में चाय पकड़ाकर कहा, दीदी आप चिंता मत करो, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। छोटी बहन सरला ने गले लगाकर कहा, दीदी आप सबसे स्ट्रांग।

पिता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा हिम्मत मत हारना। परिवार का ये साथ भी क्या कम था। अगली सुबह एक उम्मीद लिए आई। फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। सुधा ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से एक शांत आवाज आई, मिस सुधा। जी, मैं चंदन बोल रहा हूँ। हमारी कंपनी में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था। आप आज आकर ऑफिस में मिलिए, मैं आपके नंबर पर एड्रेस भेज रहा हूँ। सुधा को जैसे यकीन नहीं हुआ, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो, आप सुन रही है ना? आज आप कितने बजे आएंगी? जी जी हाँ, मैं 2 बजे आकर मिलती हूँ। थैंक यू। सुधा ने फोन रख दिया। कुछ सेकंड वो बस खड़ी रही, फिर अचानक उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई जो काफी दिनों से गायब थी। वो दौड़ती हुई अंदर गई। पापा, मुझे नौकरी मिल गई। छोटे भाई बहन उछल पड़े, पिता की आंखें भर आई और घर में बहुत दिनों बाद सुकून महसूस हुआ। उस दिन सुधा को लगा कि शायद जिंदगी ने उसे फिर से एक मौका दिया है।

सुधा को नौकरी मिल गई और एक बार फिर वही सब जद्दोजहद शुरू हो गई। वो एक बड़ी कॉरपोरेट फर्म थी जहां हर चीज समय और अनुशासन पर चलती थी। वहां देर से आना सिर्फ गलती नहीं माना जाता था बल्कि लापरवाही समझा जाता था। पहले हफ्ते ही सुधा को ये समझ आ गया था, पर वो भी क्या करती, जैसे पूरी कायनात उसे लेट करवाने पर तुली रहती। कभी जल्दी निकल जाए तो भाई बहन के स्कूल से कोई कॉल आ जाता, या कभी पिता की तबीयत का कुछ ऐसा हाल होता कि उसे देर हो ही जाती। सुधा का बॉस रमेश का स्वभाव बाकी मैनेजर्स जैसा सख्त तो नहीं था, लेकिन वह अनुशासन को लेकर बहुत स्पष्ट था। बहुत कम बोलता था, लेकिन जो कहता था वो सीधा और साफ होता था। एक दिन मीटिंग के दौरान जब सुधा थोड़ी देर से पहुंची तो सभी की नजरें उस पर टिक गई। वो हल्का सा झेपते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। मीटिंग खत्म होने के बाद रमेश ने उसे अपने केबिन में बुलाया। सुधा थोड़ी घबराई हुई अंदर गई। रमेश अपनी फाइलों से नजर उठाकर उसे देखने लगा। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने शांत आवाज में कहा, आप देर से क्यों आती हैं मैं सुधा? सुधा ने सिर झुका लिया। सर, घर में कुछ जिम्मेदारियां हैं, कभी कभी समय पर निकल नहीं पाती। रमेश ने कोई प्रतिक्रिया तुरंत नहीं दी, बस उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, कंपनी के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं? ये सुनकर सुधा के चेहरे पर हल्की बेचैनी आ गई। उसने धीमे से कहा, मैं कोशिश कर रही हूं सर। रमेश ने फाइल बंद करते हुए कहा, कोशिश काफी नहीं होती मिस सुधा, नतीजे चाहिए होते हैं। सुधा कुछ नहीं बोल सकी, वो चुपचाप सिर झुकाए बाहर निकल गई। उसने अपनी कोशिशें बढ़ा दी ताकि वो समय पर पहुंचा करे। उसने घर के काम को रात में ही पूरा करने की ठान ली। ऐसा करते करते एक दिन सुधा के उठने का समय हो गया और वो सोने की बजाय काम में ही लग गई। वो ऑफिस भी समय से पहुंच गई। आराम न करने के कारण उसकी हालत जरा खराब होने लगी, पर वो ऑफिस का काम पूरा करती रही। जब ऑफिस की छुट्टी हुई और सुधा बाहर निकली तो उसे अचानक चक्कर आ गया और वो सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। ऑफिस से बाहर निकलते हुए रमेश की नजर उस पर पड़ी तो सुधा का हाल जानने उसकी ओर बढ़ गया। सुधा को ध्यान से देखते हुए रमेश ने पूछा, मिस सुधा, आप ठीक हैं? सुधा आवाज सुनकर अचानक उठने की कोशिश करते हुए बोली, जी सर, लेकिन चक्कर के कारण वो ठीक से खड़ी नहीं हो पाई और लड़खड़ा गई। रमेश ने उसे संभालते हुए कहा, अरे संभालिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं सर, मैं बस थोड़ी देर बैठ के चली जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, आप चलिए। रमेश ने अपने ड्राइवर को इशारा किया और दोनों ने सुधा को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। सुधा ये मदद लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अभी उसकी हालत ही कुछ ऐसी थी कि वो कुछ सोचने या कहने की स्थिति में नहीं थी। कुछ ही देर में रमेश और सुधा डॉक्टर के सामने थे। सुधा की नब्ज देखते हुए डॉक्टर ने पूछा, ठीक से सोती हैं? जी। कितने घंटे? 3-4 बस। और बीती रात? नहीं सो पाई। क्यों, कुछ परेशानी है? सुधा कुछ भी नहीं बोली, लेकिन रमेश समझ गया कि ऑफिस समय से पहुंचने के कारण ही ये नींद नहीं ली गई है। डॉक्टर ने ज्यादा सलाह और कम दवाइयों के साथ उन्हें रवाना किया। रमेश ने बाहर आते ही सुधा से कहा, मिस सुधा, आपको कल आने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, मैं समय से आया करूंगी, आप काम से मत निकालिए। सुधा बेचैन सी उठी। मिस सुधा, आपको सेहत ठीक करने के लिए कल की छुट्टी दी जा रही है, आगे आपको आना है और पूरी कोशिश करना है कि समय पर आना है, लेकिन ऐसे भी नहीं आना है कि अगले दिन छुट्टी ही देनी पड़े। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, ड्राइवर आपको घर छोड़ देंगे। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू, आपने इतना किया ये भी बहुत है। कहकर सुधा जाने को हुई कि रमेश ने पास से गुजरते एक ऑटो को रोककर सुधा को उसमें बैठने के लिए कहा। सुधा बैठने में हिचकिचाने लगी, क्योंकि ऑटो में घर जाना मतलब फिजूल खर्च। तभी रमेश ने उसके हाथ में 500 का नोट देते हुए कहा, घर तक जाइएगा, ये राइड कंपनी की तरफ से है। हाँ, और जो बच जाए कल वापस।

कर दीजिएगा। जी सर, सुधा ने इतना ही कहा और ऑटो आगे बढ़ गया। सुधा को अपनी तबीयत अभी से ठीक लगने लगी, क्योंकि उसके मन में एक अच्छा सा एहसास था। दिन रात सभी का ख्याल रखने वाली सुधा ने कभी नहीं सोचा था कि कोई कभी उसका भी ख्याल रखेगा।

एक दिन बाद जब सुधा ऑफिस पहुंची तो उसने रमेश का रास्ता देखना शुरू कर दिया। आज वो समय से जरा ही देर से आई थी। हालांकि अब तो ऑफिस के लोग सुधा को मिस लेट लतीफ बुलाने लगे थे और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सुधा कब आती है। उस दिन रमेश ऑफिस ही नहीं आया और सुधा अपने काम में व्यस्त हो गई। एक दिन न आने के कारण थोड़ा काम भी बच गया था। वो देर तक रुककर काम

देखती रही। आधा ऑफिस खाली हो चुका था। देखते ही देखते पूरा ऑफिस खाली हो गया। सुधा को लगा था कि उसका काम आज पूरा हो ही नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही सुधा ने अपना काम 8 बजे पूरा किया कि वो खुशी से चिल्ला उठी और हाथ हवा में उठा के झूमती हुई खुद को शाबाशी देती हुई जोर से बोल उठी, यस शाबाश सुधा, हो गया ना काम। अरे भाई सुधा, तू चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सारे लोग जा चुके थे, इसलिए सुधा को लगा कि वो ऑफिस के अंदर अकेली ही है। चौकीदार भैया बाहर ही होते हैं, इसलिए वो यूं बेफिक्र खुशी से झूम रही थी कि अचानक उसे केबिन के दरवाजे पर खड़ा रमेश नजर आया, जो उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। सुधा को ऐसे झूमते देखकर वो भी हैरान था और उसके इस बचपने पर रमेश को हंसी भी आ रही थी। सुधा ने जैसे ही रमेश को देखा वो झेप गई। हड़बड़ी में अपनी चेयर में बैठने की कोशिश में वो गिरते गिरते बची। रमेश ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, अरे अरे मिस सुधा, ये भी क्या आपके विक्ट्री डांस का हिस्सा है? सॉरी सर, मुझे लगा कि ऑफिस में कोई नहीं है। आई एम सॉरी सर। सुधा शर्म से आंखें ही नहीं उठा पा रही थी। रमेश ने हंसते हुए कहा, आज तक तो काम को लेकर ऐसी खुशी किसी भी एम्प्लॉय की नहीं देखी। कीप इट अप। अपने काम को लेकर खुश होने में क्या बुराई है? आप जितना खुश रहेंगे कंपनी भी उतनी आगे बढ़ेगी मिस सुधा। थैंक यू सर। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, रमेश ने गंभीर होकर कहा। जी सर। सुधा ने चौंक कर अपनी आंखें उसकी ओर लगा दी। काम के चक्कर में अपनी नींद कम मत कीजिएगा, क्योंकि आप बाहर सिर पकड़कर बैठने से ज्यादा विक्टर डांस करती हुई अच्छी लगती हैं। रमेश ने मुस्कुराकर कहा तो सुधा ने झेपते हुए शर्मा कर नजरें झुका ली। अब आपको घर जाना है या नहीं? जी सर, बस अभी जा रही हूँ, कहकर सुधा ने सामान उठाया और जल्दी से बाहर निकल गई। रमेश मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। अपना काम पूरा करके थोड़ी ही देर में रमेश भी बाहर निकला। देखा तो तेज बारिश हो रही थी और सुधा ऑफिस के बाहर ही खड़ी हुई थी। आप अब तक नहीं गई? सर मैं छाता भूल गई, थोड़ी बारिश कम हो जाए तो निकलूंगी, सुधा ने बारिश की ओर देखते हुए कहा। मिस सुधा ये लीजिए, कहते हुए रमेश ने अपना छाता आगे किया। पर सर आप भी तो। मैं तो गाड़ी से जाने वाला हूँ, अगर आप कहें तो आपको हम कहीं ड्रॉप भी कर सकते हैं। नहीं सर, इतना ही बहुत है, मैं कल वापस ला दूंगी। और हाँ, आपके उस दिन के 235 रुपए बचे थे तो वो, कहते हुए सुधा ने बैग में हाथ डाला कि रमेश ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं वो आप आज जाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, ऑफिस में आपने ओवरटाइम किया है तो इतना तो बनता है। सुधा और कुछ कहती इसके पहले ही रमेश गाड़ी की ओर बढ़ गया। सुधा भी छाता खोलकर बारिश का सामना करते घर की ओर निकल चली। अगले दिन ऑफिस की छुट्टी थी और सुधा घर के कामों में लगी थी। उसकी नजर बार बार छाते की ओर जाती और वो पिछले दिन की बातें याद करके मुस्कुरा उठती।

सुधा अपनी सोच में गुम थी कि सरला घर से निकलते हुए बोली, दीदी रश्मि के घर से नोट्स लेकर आती हूँ, इसे ले जाऊं, कितना प्यारा है। कहते हुए उसने वही छाता उठा लिया। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये किसी और का है, तू मेरा छाता ले जा। वो टूटा छाता, उसे ले जाने से अच्छा तो मैं भीगती हुई चली जाऊंगी, सरला ने नाराज होते हुए कहा। अरे आज बनवा दूंगी, तू बुरा मत मान। ये ले जाने दो ना, सरला ने जिद की। बिल्कुल भी नहीं, कहकर सुधा ने सरला के हाथ से छाता छीन लिया और ऊपर रख दिया। सरला लूटकर अंदर चली गई और सुधा ने मन ही मन सोच लिया कि अब की तनख्वाह मिलने पर सरला के लिए एक छाता भी ला देगी। पिता दोनों बहनों की बहस देख रहे थे। उन्होंने सुधा को निराश देखकर उदास स्वर में कहा, मैं तेरा घर बसाने की अपनी जिम्मेदारी तो पूरी नहीं कर पाया, उसकी जगह इस घर को चलाने की जिम्मेदारी भी तुझ पे ही डाल दी, माफ करना मेरी बच्ची। अरे पापा आप ऐसा क्यों कहते हैं, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए और जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुधा पिता को समझाकर वापस घर के कामों में लग गई। उसका ध्यान अब छाते से हट चुका था। मन एक बार फिर सवालों की गलियों में भटकने लगा। किसी भी तरह सरला और सौरभ को काबिल बनाना है, जिससे वो खुद अपने पैरों पर खड़े होकर लायक बने। सुधा तो ज्यादा पढ़ नहीं पाई, इसलिए उसके सामने छोटी छोटी नौकरी करने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। रोज की तरह अगली सुबह जल्दी उठी और पानी भरने के बाद पिता को दवाई देने उनके पास पहुंची तो पिता का माथा तपता हुआ पाया। वो कराह रहे थे। सुधा घबरा गई, जल्दी से उनका टेम्परेचर और बीपी चेक किया और डॉक्टर अंकल को कॉल किया। उन्होंने कुछ फर्स्ट एड उपचार बताने के बाद 9 बजे क्लिनिक आने के लिए कहा। सरला पिता के पास बैठकर माथे पर गीली पट्टी रखने लगी और जल्दी जल्दी थोड़ा कुछ खाने के लिए भी बना दिया। ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में सभी को उसी दिन बुलाया गया था। सुधा पापा के डॉक्टर के पास पहुंची। गीतों भरी कहानी ये श्रृंखला जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे हैं रिद्धि चौरड़िया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। सुधा पापा के डॉक्टर के पास पहुंची, वहां उन्हें दिखाकर दवा लेकर उन्हें घर छोड़ने आई।

फिर सरला को पापा के पास बिठाकर जल्दी ऑफिस भागी। पड़ोस की संजना दीदी को हिदायत दी कि वो भी बीच बीच में देखते रहें और कोई भी बात हो तो तुरंत कॉल कर दें। ऑफिस पहुंची तो वो आज 2 घंटे लेट हो चुकी थी। रमन ने उसे देखते ही कहा, सुधा आज तो रिकॉर्ड ही बना दिया, बॉस में मिलने के लिए कहा है। अपना सामान डेस्क पर रखकर सुधा सीधे रमेश के केबिन में पहुंची। रमेश काम में व्यस्त था, उसने सुधा को बैठने का इशारा किया। इस चुप्पी ने तो सुधा की जान ही निकाल दी थी। रमेश ने अपना वो काम पूरा किया और पूछा, आज इतनी देर क्यों? सर, पापा की तबीयत, कहते हुए सुधा का गला रूंद गया और वो आगे कुछ ना बोल सकी। तो आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? आप जानती हैं कि आप इन्फॉर्म करके घर पर रह सकती थी, पर आपने 2 घंटे बाद ऑफिस आना चुना, लेकिन एक छोटा सा फोन कॉल करना ठीक नहीं समझा, क्यों? सर, मैंने सोचा कि संभाल लूंगी, सुधा ने रूंधे स्वर में ही कहा। क्या संभाल लेंगी आप? ना आप फोन उठा रही हैं, ना आप कुछ बता रही हैं। आप अक्सर देर से आती हैं, हमें आदत है, लेकिन इतनी देर, भगवान ना करे, लेकिन अगर आपको रास्ते में कुछ हो जाता, मान लीजिए उस दिन की तरह चक्कर आ जाता, तो पता कैसे चलता? हम तो यही सोचेंगे कि आप देर से आती हैं और घर के लोग सोचेंगे कि आप ऑफिस में हैं। जानती हैं पिछले 1 घंटे से मैं कितनी टेंशन में हूं, आप फोन भी नहीं उठाती हैं। सब कुछ अकेले संभालने की जरूरत नहीं होती है मिस सुधा, हम सब हैं। सुधा कुछ नहीं बोली, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। आखिर वो बस इतना ही बोल पाई, सॉरी सर। डॉक्टर ने क्या बताया है, रमेश ने पूछा, तो सुधा ने सारी बात उसे बता दी। रमेश ने उसके सामने एक फाइल रखी और कहा, आप इस प्रोजेक्ट में मेरी टीम में हैं, मीटिंग दोपहर में है, तब तक पढ़ लीजिए, कोई भी सवाल हो तो मीटिंग में पूछिए। सुधा ने फाइल उठाकर हां में सिर हिलाया और बाहर जाने के लिए पलटी कि रमेश ने पूछा, आप सैंडविच खाती हैं? जी, सुधा ने सवालिया लहजे में पूछा। ठीक है, चाय या कॉफी? सर, मिस सुधा, मेरी टीम का फिट होना भी मेरे काम का हिस्सा है, कुछ सीखिए राघव से, ऑफिस फंड से ही रोज नाश्ता करता है। सुधा ने जब आश्चर्य से रमेश की ओर देखा तो रमेश ने मुस्कुराकर हां में सिर हिलाया और उसकी मुस्कान से सुधा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बाहर निकलकर भी सुधा के चेहरे पर वो मुस्कान कायम रही।

सुधा की तरह ही समय भी पंख लगाकर ही उड़ रहा था। अब सुधा घर के साथ साथ ऑफिस के काम को भी सहजता से संभालने में जुटी रहती थी। ऑफिस उसे अब अच्छा लगने लगा था। उसकी नजरें ऑफिस में रमेश को ही ढूंढा करती, लेकिन वो सामने आता तो सुधा घबरा जाती। सुधा रमेश के प्रोजेक्ट में जी जान से जुटी थी। रमेश सुधा को हिदायत दिया करता कि वो काम में मदद ले लिया करे, लेकिन सुधा की तो आदत थी कि वो सब कुछ अकेले ही संभालना चाहती। रमेश ने सुधा को प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी भी सौंप दी थी। रमेश और सुधा इस प्रोजेक्ट के कारण काफी समय साथ ही बिताते। एक रोज घर से टिफिन लाते हुए सुधा रमेश के लिए भी खाना ले आई। जब लंच टाइम में रमेश के सामने उसने उसका टिफिन रखा तो रमेश आश्चर्य से उसे देखने लगा। सुधा ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराकर चल दी। रमेश ने टिफिन वापस देते हुए उसे यही कहा कि बहुत दिनों बाद घर का खाना खाया, थैंक यू। प्रोजेक्ट के सिलसिले में ही रमेश और सुधा एक रोज मीटिंग में गए तो लौटते वक्त वहाँ पास ही सागर के किनारे टहलने लगे। रमेश से बातों बातों में सुधा ने पूछा, सर आपको घर का खाना इतना पसंद है तो आप लाते क्यों नहीं? क्योंकि घर में कोई है ही नहीं। सुधा ये सुनकर कुछ बोल नहीं पाई। उसने बैग से निकाल कर अपना टिफिन रमेश के हाथ में दे दिया। आज देने से क्या होगा, रोज लाओ तो बात है, कहते हुए रमेश समुद्र के किनारे ही बैठकर टिफिन खोलकर खाने लगा।

अगले दिन जल्दी ऑफिस आकर रमेश सुधा का इंतजार करने लगा। न सुधा आई न उसका फोन लगा। चंदन ने बताया कि सुधा ने छुट्टी ली है। रमेश बेचैन सा रहता, लेकिन उसे लगा कि सुधा के साथ इतना कुछ लगा रहता है कि क्या किया जा सकता है। हफ्ते भर बाद चंदन ने बताया कि सुधा ने ऑफिस में काम छोड़ने की अर्जी दे दी है। रमेश को तो कुछ समझ ही नहीं आया। चंदन ने साथ आया एक खत भी रमेश को दिया। जब रमेश ने खत खोला तो उसमें लिखा था, सर इंसान चाहता क्या है और होता क्या है। आपसे एक छोटा सा वादा किया था कि आपके लिए रोज टिफिन लेकर आऊंगी, लेकिन ये भी नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने परिवार के साथ मुंबई से बाहर जा रही हूं। पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि ना कुछ कह पाई ना समझ ही पाई। पर अच्छी बात यह है कि जिनसे शादी हो रही है वो पापा के साथ साथ सरला और सौरभ को भी साथ रखने के लिए तैयार है। कम से कम इन दोनों का भविष्य अच्छा हो जाएगा। कुछ बन जाएंगे तो अपने मन की कर पाएंगे, वरना परिस्थिति कहां किसी की सुनती है। माफ कीजिएगा, मिलने नहीं आ पाई। बस यही तमन्ना है कि आपके घर में कोई आ जाए जो आपको रोज टिफिन बनाकर दे। आप ये कोशिश कीजिएगा, सुधा। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। काश उसने सुधा से अपने दिल की बात पहले ही कह दी होती। काश वो उसके पिता से ही बात कर लेता। वो भी तो उसके परिवार को अपनाना चाहता था। पर अब इतनी देर हो चुकी थी। रमेश के मुंह से केवल इतना ही निकला, सुधा तुमने कम से कम मुझे इतना अपना तो समझा कि मेरी खुशियों को भी अपनी खुशी मानकर अपने साथ ही निछावर कर दिया।

एक बार फिर भागते शहर मुंबई में जीवन की जद्दोजहद के बीच एक और प्रेम कहानी अधूरी रह गई। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे रिद्धि चौरड़िया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। वाचन नेहा शर्मा का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

पेश खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। बारिशों का ये भीगता मौसम जाने कितनी ही कसक दिल में जगाता है। रात भीगती है तो भीगते हैं ये रेशमी नजारे, बूंदों में झिलमिलाता वो उनका हुस्न शबाब। अजब हुस्न की कारीगरी है ये उनका शबाब, बंद कलियों में हो जैसे फूलों का इंतखाब।

किस तारे देखते हैं, ये मोती सी चमक, ये पायल की खनक, क्या सोचकर ये रात आई है, ये हुस्न की कारीगरी, ये आंखों की जादूगरी, मोहब्बत के तिलस्म में गिरफ्तार, काश ये सारा जहां होता, कुछ होता न होता, प्यार में ये मुमकिन होता।

दिल धड़कता है दो घड़ी तो बैठ जाइए, न जाइए दूर कि जी घबराता है। दिल अपना था आपसे लगा बैठे, राज दिल आपसे सुना बैठे। कुछ आपने भी छुपाया है कहिए न कहिए, कलियों के दिल को धड़काया है आपने कहिए कि न कहिए। जाने बातों से बहलाते क्यों हैं, सच कहते नहीं कि हाँ हमने भी मोहब्बत की है, रात हमने भी तन्हाइयों में बसर की है।

शोलों से न खेलिए, ये नाजुकी की बात नहीं, जो इसको छेड़ा तो बारहा मचल जाएगी। पास आइए न फेरिए ये नजरें करम, दिल आपका है यकीन मानिए कि न मानिए। न देखो इधर ऐ शब के तारों, जरा छुप जाओ, चिराग हुस्न से आ रही है रोशनी थम थम।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। बादलों से बरसते बूंदों के मोती जा अटके हैं उनकी जुल्फों में, भीगते शानों पे कभी ढलते कभी आंचल में सिमट जाते हैं। ये बूंदों की खुशनसीबी कुछ ठहरी कुछ ढल गई, कुछ टूट कर लबों को भिगो गई। संदली रात में बारिशों का रंग चढ़ता गया, लम्हा लम्हा उनके रुखसार का रंग गुलाबी होता गया।

आकाश ये रात थम जाए, बादलों से बूंदों का आशियां लरस जाए, इश्क हुस्न के दरमियां न रहे आज कोई फासला, पर्वतों से टूट के देखो काली घटा बरसती है, न पूछिए हमसे कि बारिशों से भी आग बरसती है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, तराने नए पुराने। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए

इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत लता मंगेशकर और मुकेश के गाए इस गीत के साथ, फिल्म का नाम है सन्यासी।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए, स्वर मोहम्मद रफी का, फिल्म का नाम पत्थर के सनम।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए।

फिल्म शहीद का गीत अभी आपने सुना, स्वर लता मंगेशकर और साथियों के थे। गीतकार और संगीतकार थे प्रेम धवन। रवि के संगीत निर्देशन में हम आपको साहिर लुधियानवी का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। आवाज मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है अमानत।

यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था अमानत। गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने और धुन बनाई थी रवि ने।

0: na simang singjan marakni itko kna sona matna ha da au dik dik sani jamano hingbat sangmani gi drangho ka matang skagen
1: आज से ही सॉल्ट फैट्स और शुगर में कटौती कराना शुरू कर दे। खाना पकाने के दौरान थोड़ा सा उपयोग करा के इस प्रक्रिया को शुरू करें। ताजी सब्जियां, दही और फलों में भी और ना डालें। क्या आप अपनी चाय चीनी के साथ लेते हैं? कोई बात नहीं, आप पी सकते हैं, लेकिन अपनी चीनी को लगभग आधा चम्मच तक कम कर दे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: Mandi dong ama, angan nak simang ni booth level officer, hajar ni kalau tobel sini SIR ni voter enumeration nari bacem.
3: Oh, unar angan ramai ku dakna nanggen.
2: Dakna nang ni rang dal tua ba, kak sapai yang nak ni geman si rakyat ni rang omong jawa rang ku nian ba, enumeration foremost, gapat ya soi kakpo, aro baby kita yang nak mai ba thari dapna nang ni rang dongo deang na

0: सनम अब जरा मान
1: जा। आशा भोसले को आपने सुना, फिल्म का नाम था कसमे वादे। गीत रचना गुलशन बावरा की थी और तर्ज राहुल देव बर्मन की थी।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था दो झूठ, गीत एमजी हशमत का था और धुन शंकर जयकिशन की थी। हम आपको बताना चाहेंगे बॉम्बे टॉकीज में कल दोपहर बाद 4 बजे आप सुनेंगे फिल्मी दुनिया के जाने माने संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। और ये है इस कार्यक्रम की आखिरी गीत रचना, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की फिल्म त्रिशूल के लिए, शब्दकार साहिर लुधियानवी, धुन खयाम साहब की।

0: अनमोल यादें। अनमोल यादें।
1: नमस्कार श्रोताओं, अनमोल यादें कार्यक्रम के इस चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और स्वागत है जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर जी का। राजीव साहब बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू, नमस्कार।
1: अब पिछले एपिसोड में हमने कुछ नए फिल्मों की बात की थी, तो आज भी क्या नए फिल्मों के बारे में ही हम जानेंगे?
2: जी हाँ, नए फिल्मों में भी ऐसे गाने जैसे मैंने कहा था कि काफी है, क्योंकि म्यूजिक कंपनीज का रोल भी था इसमें।
1: जी जी,
2: ये एक गाना जो हमने चुना है आज वो फिल्म हासिल का है।
1: अच्छा।
2: और ये हासिल की एक सिचुएशन है जो फिल्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रूशियल सिचुएशन है, जहाँ पे ये सूफी गाना एक दरगाह में बज रहा है।
1: अच्छा।
2: इसके गायक है रूप कुमार राठौड़ और जावेद अली, और इसके जो बोल है वो इसरार अंसारी ने लिखे हैं।

0: क्या बात है। हासिल फिल्म का ये सूफियाना कलाम जो इसरार अंसारी साहब का लिखा हुआ था हमने सुना, और अब हम किस गीत की ओर बढ़ रहे हैं राजीव साहब?
1: अब हम उस गीत की तरफ बढ़ेंगे जो देखिए 2005 में एक जहर करके फिल्म आई थी।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: जो थोड़ी बहुत चली भी थी, उसके गाने अगर तुम मिल जाओ और वो लम्हे बहुत सुपरहिट हुए थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और इसमें एक ऐसा गाना था जो मेरे लिए बहुत पसंदीदा है और बहुत ही सोलफुल जिसे कहते हैं गाना।
0: हाँ,
1: है
0: हाँ, हाँ।
1: और ये केके ने गाया था, जिसकी तुलना मैं तो बड़े सिंगर्स के साथ करना चाहूंगा, क्योंकि अगर कोई सिंगर इस जनरेशन में था जो उस लेवल पर पहुंच सकता था वो था केके।
0: जी जी बिल्कुल।
1: ये तो कोइंसिडेंस है कि उनके इनिशियल किशोर कुमार से मिलते थे और वो सीखे हुए भी नहीं थे जैसे किशोर कुमार थे।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन
0: बिल्कुल।
1: उनके गानों में जो रूह थी वो बहुत ही कम सिंगर्स में मिलती है हमारे जनरेशन के।
0: बिल्कुल सही।
1: और वो गाना मैं इसके लिए पेश कर रहा हूँ क्योंकि इस बार इसका म्यूजिक डायरेक्टर है रूप कुमार राठौर, जो हासिल के गाने में एक सिंगर थे। इस गाने के गीत लिखे हैं शकील आजमी ने
0: जी,
1: और जैसे मैंने कहा फिल्म जहर। ए बेखबर ए

0: क्या बात है, जहर फिल्म का ये अनमोल गाना हमने याद किया और इसी के साथ आज का ये एपिसोड पूरा हो रहा है। राजीव जी, अपने श्रोताओं से विदा लेते हैं।
1: थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।
2: अनमोल यादें। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अनमोल यादें।
3: ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से संसद में आज हुई कार्यवाही।
4: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
5: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
6: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
4: केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
7: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ बातचीत में शामिल हुए, उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों को हर तरीके से चर्चा हुई।
4: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल रेलखंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दे दी है। इस पर 1,264 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नई दिल्ली में आज सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। वक्तव्य में सदस्य देशों ने 2025 से 2028 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और लचीले समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए श्री राय ने सदस्य देशों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, लचीले बुनियादी ढांचे, प्रकृति आधारित समाधानों और सामुदायिक लचीलेपन में सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया। मीडिया को जानकारी देते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
8: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहाँ पर हम ज्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं, तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया है।
4: गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी दक्षिण गुजरात में बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पैरा पावर लिफ्टिंग के पुरुष लाइटवेट वर्ग में भारत के अशोक चौथे स्थान पर रहे और पदक से चूक गए। इसी वर्ग में परमजीत सिंह ने छठा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
9: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced regarding bringing a bill with provisions for a strong action in cases of paper leaks will be introduced in the Parliament. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh today met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said they gave a patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put forth three main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussion with the delegation tomorrow.
10: The meeting lasted for nearly 2 hours. I, along with Union Minister Jitendra Singh, participated in the discussion. The discussions were held in a cordial atmosphere and various issues were discussed from every perspective. Their proposal was also discussed.
9: The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved third and fourth rail line of Bellary-Guntakal section in Karnataka and Andhra Pradesh with a total cost of 1,264 crore rupees. It will increase the existing network of Indian Railways by about 46 kilometres. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said it will improve connectivity between Andhra Pradesh and Karnataka. He also informed about

0: नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र
1: और मैं हूं प्रशांत कुमार।
0: स्पोर्ट्सकैन के आज के इस अंक में आप सभी का हम दोनों स्वागत करते हैं। हम एक बार फिर मौजूद हैं, नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज, एक नई शुरुआत के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्सकैन के साथ खेल की हर बात, पहले हेडलाइंस।
1: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पैरा पावर लिफ्टिंग के पुरुष लाइटवेट वर्ग में अशोक चौथे स्थान पर रहकर पदक से चूके। श्रीहरि नटराज ने पुरुषों के 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी के सेमीफाइनल में जगह बनाई। हांगझोउ में ISSF विश्व कप में संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में रजत पदक जीता। अनहत सिंह ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश व्यक्तिगत चैंपियनशिप के वुमेन सिंगल सेमीफाइनल में पहुंची। भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की श्रृंखला का दूसरा 2020 मैच कल हरारे में खेला जाएगा और सितंबर में उज्बेकिस्तान के समरकंद में होने वाले फिडे शतरंज ओलंपियाड के लिए भारत की महिला और पुरुष टीम की घोषणा हुई।
0: और अब खबर विस्तार से। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पैरा पावर लिफ्टिंग के पुरुष लाइटवेट वर्ग में भारत के अशोक चौथे स्थान पर रहे और पदक से चूक गए। इसी वर्ग में परमजीत सिंह को छठा स्थान मिला। अशोक ने कुल 143.8 जबकि परमजीत ने 135.6 अंक हासिल किए।
1: धर्मेंद्र, भारत के आज दूसरे दिन तैराक श्रीहरि नटराज ने राष्ट्रमंडल खेलों के पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा में संयुक्त 14वें स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली। दो बार के ओलंपियन और कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके नटराज ने 25.52 सेकंड का समय लिया। उन्होंने बरमूडा के जैक हार्वे के साथ संयुक्त 14वां स्थान हासिल किया। सेमीफाइनल के लिए हीट से शीर्ष 16 तैराकों का चयन किया गया। नटराज अपनी 8 खिलाड़ियों वाले हीट में 5वें स्थान पर रहे। सेमीफाइनल आज देर रात खेला जाएगा। उधर पैरा तैराकी में RVV के BK बुदगियाना और इमाम अली ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल S13 वर्ग के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हीट में हिस्सा लेने वाले सभी 8 तैराक फाइनल में पहुंचे। बुदगियाना ने 57.1 सेकंड के समय के साथ हीट में तीसरा स्थान हासिल किया जबकि इमाम अली 1:05.32 सेकंड के समय के साथ 8वें स्थान पर रहे। S13 वर्ग दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के लिए निर्धारित पैरा तैराकी श्रेणी है।
0: और प्रशांत, पैरा पावरलिफ्टिंग में जसप्रीत कौर और सुमन देवी महिला लाइटवेट वर्ग में पदक स्पर्धा में इस समय वजन उठा रही हैं और इस समय जो जानकारी है उसके अनुसार सुमन देवी रैंक में पहले नंबर पर चल रही हैं। उधर लॉन बॉल्स में रूपा रानी तिर्की और पिंकी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका की थाबेलो मुवांको और जैकी वैन रेहन्सबर्ग के साथ महिला डबल्स वर्ग के दूसरे दौर में चल रहा है। भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे जिम्नास्टिक्स में पुरुष टीम फाइनल की पदक स्पर्धा होगी। रात 10:30 बजे लॉन बॉल्स में पुतुल सोनोवाल फॉकलैंड द्वीप समूह के सेसिल अलेक्जेंडर के साथ पुरुष सिंगल्स वर्ग के दूसरे दौर का मैच खेलेंगे। रात 10:40 पर पावरलिफ्टिंग में महिला हेवीवेट वर्ग में कस्तूरी राजमणि पदक के लिए चुनौती पेश करेंगी। रात 11 बजे बॉक्सिंग में जदुमणि सिंह स्कॉटलैंड के आरोन कुलेन से पुरुष 55 किलोग्राम वर्ग के राउंड ऑफ 32 मैच में मुकाबला करेंगे। भारतीय समय के अनुसार रात 12 बजे पैरा तैराकी में RVV BK बुदिगिना और अली माम पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल S13 फाइनल में उतरेंगे। 12:30 बजे श्रीहरि नटराज 50 मीटर बैक स्ट्रोक सेमीफाइनल में चुनौती पेश करेंगे। इसी समय पैरा पावरलिफ्टिंग में झंडू कुमार और सुधीर पुरुषों के हैवीवेट वर्ग की पदक स्पर्धा में दावेदारी पेश करेंगे।
1: उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने भरोसा जताया है कि देश के एथलीट ग्लासगो में हो रहे इस मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में जुनून, पक्के इरादे और बेहतरीन खेल के साथ हिस्सा लेंगे। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 शुरू हो रहे हैं, भारतीय दल को मेरी शुभकामनाएं। मुझे भरोसा है कि हमारे एथलीट गेम्स में जोश, पक्के इरादे और बेहतरीन खेल के साथ हिस्सा लेंगे। हमारे एथलीटों का हुनर और लगन हमेशा अनगिनत भारतीयों को प्रेरित करता रहेगा। और श्रोता, हम आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कल एक रंगारंग कार्यक्रम में हुई। गेम्स की शुरुआत का आधिकारिक ऐलान किंग चार्ल्स तृतीय ने किया। ग्लासगो 2014 के बाद एक बार फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कर रहा है। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने परेड ऑफ नेशंस के दौरान भारतीय टीम का नेतृत्व भी किया। वेटलिफ्टिंग में भारत की ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई ने तिरंगा उठाया, जबकि टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना ने सेरेमोनियल कॉमनवेल्थ बैटन उठाया। धर्मेंद्र, भारतीय दल पैरा स्पोर्ट्स समेत 13 खेलों में हिस्सा ले रहा है
0: जी। और एक अच्छी खबर हम आपके लिए बताएं कि नहीं है भारत के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की रजत पदक विजेता जूडो खिलाड़ी तुलिका मान को पिछले 12 महीनों में 3 बार रहने के स्थान की जानकारी देने में नाकाम रहने के कारण अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इसके कारण उन्हें ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों की भारतीय टीम से हटा दिया गया है। तुलिका ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 78 किलोग्राम से अधिक वजन वर्ग में रजत पदक जीता था। इस बार भी वो पदक की प्रबल दावेदार थी। अब उन पर 2 साल के प्रतिबंध का खतरा मंडरा रहा है। वह ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों से हटाई जाने वाली दूसरों जूडो खिलाड़ी हैं। कल एक अन्य भारतीय जूडो खिलाड़ी अरुण कुमार को 73 किलोग्राम से कम वजन वर्ग से हटा दिया गया था, क्योंकि वे प्रतियोगिता से बाहर की गई डोप जांच में विफल रह गए थे।
1: और अब बात स्क्वैश पर भी कर लेते हैं। ओंटारियो में भारत की उभरती खिलाड़ी अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश व्यक्तिगत चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए विमेन सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर ओम सेमवाल, संदेश रवि कुमार और रतिका सिलान कड़े मुकाबले में जीत दर्ज करके आज पीएसए सिंगापुर चैलेंजर स्क्वैश टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए।
2: विश्व जूनियर स्क्वैश व्यक्तिगत चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त अनाहत सिंह के खेल में धैर्य और कौशल का अद्भुत संगम देखने को मिला। महिला रैंकिंग में विश्व की 20वें नंबर के खिलाड़ी अनाहत ने अंतिम 8 के मैच में मिस्र की हबीबा रिज्ग को 4 सेट तक चले मुकाबले में 11-7, 11-5, 6-11, 11-9 से हराया। इस प्रतियोगिता में पिछले साल कांस्य पदक जीतने वाली अनाहत इस तरह से विश्व जूनियर चैंपियनशिप में लगातार 2 बार

0: में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। दिल्ली की रहने वाली अनाहत का अगला मैच मिस्र की ही बार्ब समीह से होगा। उम्मीद है कि वह अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए न सिर्फ सेमीफाइनल जीतेंगी बल्कि इस बार खिताब पर भी अपना नाम दर्ज कराएंगी। उधर पीएसए सिंगापुर चैलेंजर स्क्वाश टूर्नामेंट में भी भारत के पदक जीतने की बेहतर उम्मीद बनी हुई है। रवि कुमार ने पुरुषों के दूसरे दौर में जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त श्रोता यासुनश्री को 12-10, 11-5, 3-11, 11-7 से हराकर क्वार्टर फाइनल का टिकट कटाया। चौथी वरीयता प्राप्त ओम सेमवाल ने स्थानीय खिलाड़ी आरोन लियांग को 5 सेट के कड़े मुकाबले में 11-9, 4-11, 4-11, 12-10, 11-8 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। महिला वर्ग में तीसरी वरीयता प्राप्त रतिका को दूसरे दौर में स्थानीय प्रतिद्वंदी वायलिन और योंग पर जीत हासिल करने के लिए काफी पसीना बहाना पड़ा। 5 सेट के मैराथन मुकाबले में रतिका ने 8-11, 11-9, 11-2, 7-11, 12-10 से जीत हासिल की। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: बात कर लेते हैं निशानेबाजी पर, जहां संयम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। चीन के हांगझाऊ में आईएसएसएफ विश्व कप राइफल पिस्टल शॉटगन प्रतियोगिता में भारत के पदक का खाता खुल गया है। संयम ने सटीक निशाना साधते हुए आज महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में रजत पदक जीता।
2: पूर्व जूनियर वर्ल्ड और एशियन चैंपियन संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने पोडियम फिनिश पक्का करने के लिए फाइनल फायरिंग लाइन पर कदम रखने से पहले अपनी सीरीज में लगातार प्रिसिजन बनाए रखा। 22 वर्षीय संयम ने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर रजत पदक अपने नाम किया। वह गोल्ड मेडल जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट से चूक गयी। हांगझोंग में मिला यह सिल्वर मेडल संयम का दूसरा आईएसएसएफ वर्ल्ड कप मेडल है। उन्होंने इससे पहले कतर के दोहा में हुए 2025 आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल में भी महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था। चीन की याओ किया नक्सुन 243.6 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रही, जबकि ईरान की ओलंपियन हनिया रोस्तमियन 221 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर रही। हालांकि कई बार आईएसएसएफ वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल जीत चुकी सुरुचि सिंह फाइनल में कुल 137.6 पॉइंट के साथ 7वें स्थान पर रही। पुरुषों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल क्वालिफिकेशन में भावेश खावत भारत के सबसे अच्छे खिलाड़ी रहे, उन्होंने 22वां स्थान हासिल किया। ओंकार सिंह, अनिश भनवाला, प्रदीप सिंह शेखावत और आदर्श सिंह भी क्वालिफाई नहीं कर सके। यहाँ पर हम आपको बता दें, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी साल के अंत में होने वाले आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, जो दिसंबर में रोम में होगा। हांगझोंग शूटिंग मीट एक संयुक्त आईएसएसएफ वर्ल्ड कप है जिसमें राइफल, पिस्टल और शॉटगन शूटर हिस्सा ले रहे हैं और यह प्रतियोगिता मंगलवार को समाप्त हो जाएगी। ज्योत्सना पांडे, स्पोर्ट्स स्कैन।
3: और अब बात क्रिकेट की। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैच की श्रृंखला का दूसरा 2020 क्रिकेट मैच कल हरारे में खेला जाएगा। इससे पहले कल रात भारत ने पहले मैच में 7 विकेट से जीत हासिल कर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
4: आयरलैंड और फिर इंग्लैंड के खिलाफ करारी शिकस्त के बाद कल रात जिम्बाब्वे पर जीत के साथ भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में सफलता की राह पर वापस लौटती दिख रही है। इस मैच में मयंक यादव की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के चलते मेजबान टीम 7 विकेट पर सिर्फ 125 रन ही बना सकी थी। मयंक ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लिए। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी के 19 गेंद में बनाए गए 50 रन की बदौलत भारत ने ये मैच आसानी से जीत लिया। मैच में वैभव इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में 50 लगाने वाले यंगेस्ट प्लेयर बन गए। उन्होंने सचिन दुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सूर्यवंशी ने अर्धशतक लगाने के बाद अपनी मां के नाम आरती का पहला लेटर ए का साइन बनाया। अपनी इस पारी को वैभव ने बेहद खास बताया।
5: आपका जब करियर का स्टार्टिंग फेज रहता है और इस तरीके के इनिंग्स अगर आपको मिलते स्टार्टिंग्स में और आप अच्छा करते तो कॉन्फिडेंस आता है नेक्स्ट मैचेस के लिए। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने जोन में हूँ और खुद के स्ट्रेंथ को मैंने बैक किया। फैमिली को डेडिकेट करूंगा, अपने कोचेस को डेडिकेट करूंगा, उन सबों को डेडिकेट करूंगा जिन्होंने मेरे जर्नी में मेरा साथ दिया है, सपोर्ट किया है मुझे हर अच्छे बुरे फेज में।
4: कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी युवा मयंक और वैभव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की।
6: एक्सेप्शनल स्टार्ट गिवन बाय मयंक, द वे ही बोल्ड इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग हिज लाइन एंड लेंथ, नॉट गिविंग देम रूम टू स्कोर रन्स, आई थिंक दैट सेट द रिदम फॉर अस। एंड देन वैभव कमिंग इन द पावर प्ले गिविंग अस एक्सेप्शनल स्टार्ट, ही इज फियरलेस यंगस्टर एंड द वे ही अप्रोच्ड दिस इनिंग्स वाज इनडोमिटेबल। आई थिंक ही इज प्लेड हियर बिफोर सो ही इज गॉट अ फेयर आईडिया अबाउट हाउ द विकेट्स आर। ही इज गॉट 175 आई गेस इन अंडर 19 फाइनल, सो डेफिनेटली ही पजेसेस इमेंस confidence when he steps onto the field, so you could see it today.
4: अब कल भारत के पास दूसरे मैच में जीत के साथ सीरीज में 2-0

0: की निर्णायक बढ़त लेने का मौका होगा। हालांकि ये काम इतना आसान भी नहीं होगा क्योंकि जिम्बाब्वे ने हाल ही में अपने घरेलू मैदानों पर अच्छा प्रदर्शन किया है। जिम्बाब्वे की टीम भी जीत के लिए सब कुछ झोंक देगी, लेकिन इसके लिए उनके गेंदबाजों के साथ साथ बल्लेबाजों को भी अपना शत प्रतिशत देना होगा। पहले मैच में हरारे की पिच तेज गेंदबाजों के लिए अच्छी नजर आई थी। हालांकि क्रीज पर सेट होने के बाद बल्लेबाज भी आसानी से रन बनाते हुए दिखाई दिए। इस मैदान पर अब तक कुल 84 20-20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 45 में जीत पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के हाथ लगी है। वहीं 37 मुकाबलों में रनों का पीछा करने वाली टीम ने जीत दर्ज की है। पहली पारी का औसतन स्कोर 155 रहा, वहीं दूसरी पारी का औसतन स्कोर 133 रन रहा है। कल हरारे में मौसम पूरी तरह से साफ रहने की उम्मीद है और बारिश होने की आशंका ना के बराबर है। ऐसे में एक रोमांचक मुकाबले की पूरी उम्मीद है। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: उधर जापान के अचिना गोया में 19 सितंबर से शुरू होने वाले एशियाई खेलों की क्रिकेट स्पर्धा पुरुषों के मैच के साथ 24 सितंबर से शुरू होगी। इसमें मौजूदा चैंपियन भारत और पाकिस्तान के पुरुष और महिला क्रिकेट टीम को सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह दी गई है। धर्मेंद्र, भारतीय महिला टीम जापान के खिलाफ अपने अभियान की शुरूआत करेगी, जबकि पुरुष टीम का मुकाबला प्रारंभिक चरण के मैच के बाद तय होगा।
2: और क्रिकेट के मैदान से अब शतरंज के बिसात की तरफ चलते हैं। भारत ने 16 से 27 सितंबर तक उज्बेकिस्तान के समरकंद में होने वाले फिडे शतरंज ओलंपियाड के लिए टीम की घोषणा कर दी है। ओपन वर्ग की टीम में विश्व चैंपियन डी गुकेश और शानदार फॉर्म में चल रहे आर प्रज्ञानंदा के अलावा अर्जुन एरिगैसी, निहाल सरीन और विदित गुजराती शामिल हैं। सरीन 2024 में खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा नहीं थे। महिला टीम में कोनेरू हम्पी, आर वैशाली, विश्व विजेता दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल और सविता श्री बी को शामिल किया गया। इसमें से हम्पी और सविता श्री 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम में शामिल नहीं थी।
1: उधर धर्मेंद्र, 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने विश्व शतरंज की सर्वोच्च संस्था फिडे के अंतरिम अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। इसके प्रमुख अकार्डी डोरकोविच को यूरोपीय संघ ने प्रतिबंधित व्यक्तियों की सूची में शामिल कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने प्रतिबंध हटने तक अपना पद छोड़ दिया है।
2: और भारत की अंडर 20 फुटबॉल टीम 2027 में होने वाले एएफसी अंडर 20 एशिया कप क्वालीफायर की तैयारियों के तहत 3 और 6 अगस्त को सिंगापुर के खिलाफ 2 अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच खेलेगी।
1: और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। खेल के मैदान की हर खबर के साथ आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और धर्मेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस

0: हथकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
1: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
2: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
3: लगभग दो घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
2: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने तीन मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
4: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
5: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
2: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री परिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा

0: की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनर्स्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
1: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहाँ पर हम ज़्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
2: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज NDRF, SDRF और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई।

0: दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्म आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। और निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves draft bill to set up fast-track courts and stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. National Testing Agency terminates 47 officials. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh meet CJP delegation in New Delhi. Cabinet Committee on Economic Affairs approves new rail lines in Karnataka, Andhra Pradesh and new chemical park scheme to boost industrial growth. Proceedings of both Houses of Parliament remain disrupted amid ruckus by opposition. Heavy rains continue to lash several parts of Gujarat, affecting normal life. And in ISSF Shooting World Cup, Sanyam wins silver medal in women's 10-meter air pistol event in China. And now the news in detail. The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashwani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh today met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said they gave a patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put forth three main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussion with the delegation tomorrow.
2: The meeting lasted for nearly 2 hours. I, along with Union Minister Jitendra Singh, participated in the discussion.

0: This is Akashvani. In the weekly program Current Affairs, now we bring you a discussion on electoral reforms in India, the role of Special Intensive Revision SIR in strengthening democracy. The participants are Akshay Rawat, former Director General, Election Commission of India, and K.V. Prasad, Senior Journalist. Moderator is Sonu Sood.
1: Good evening, listeners. Welcome to Current Affairs. And today's topic of discussion is electoral.
2: हस्तियों का अनमोल खजाना
3: आज फिर जीने की तमन्ना है।
2: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
4: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
2: अभिनेत्री वहीदा रहमान
4: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी ने।
2: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बाती दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और लेखक मनोज कुमार की।

मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में हुआ था। ये जगह अब पाकिस्तान में है। उनका वास्तविक नाम है हरि कृष्ण गोस्वामी। जब वो 10 बरस के थे तो देश का बंटवारा हो गया और पूरा परिवार दिल्ली में आ गया और रिफ्यूजीज यानी शरणार्थियों के एक कैंप में पुराने राजेंद्र नगर दिल्ली में रहने लगा। मनोज कुमार ने अपनी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में ही पूरी की। बचपन से ही दिलीप कुमार उनके पसंदीदा अभिनेता थे। वो दिलीप कुमार की कॉपी किया करते थे अपने कॉलेज के दिनों में। शुरुआती दिनों में मनोज कुमार ने कुछ छोटे मोटे काम किए, यहां तक कि उन्होंने सिलाई मशीन के सेल्समैन के तौर पर भी कुछ दिन काम किया। बाद में अभिनेता बनने का सपना लेकर मनोज कुमार मुंबई आ गए और यहां उन्होंने कुछ छोटी फिल्मों से की अपनी शुरुआत, जैसे सन 1957 में आई थी फिल्म फैशन।

तकरीबन 5 बरस बाद विजय भट्ट की फिल्म हरियाली और रास्ता के जरिए मनोज कुमार को मिली अपनी पहली बड़ी कामयाबी। इस फिल्म में उनकी नायिका थी माला सिन्हा।

सन 1965 में ही विचार आया शहीद भगत सिंह पर फिल्म बनाने का। फिल्म शहीद का निर्माण बहुत सारे संघर्षों से घिर गया था, लेकिन मनोज कुमार ने ठान लिया था कि ये फिल्म तो बनकर रहेगी और शहीद भगत सिंह के जीवन पर सबसे प्रामाणिक फिल्म यही है जिसमें मनोज कुमार शामिल थे। इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा भी नजर आए। फिल्म के गीतकार और संगीतकार थे प्रेम धवन।

मनोज कुमार के करियर के दो अलग अलग पहलू हैं। एक वो पहलू है जहां वो रूमानी नायक के तौर पर कई फिल्मों में नजर आए, और दूसरा पहलू है भारत कुमार वाला पहलू, जहां उन्होंने देशभक्ति और सरोकार वाला सिनेमा बनाया। तो चलिए पहले बतौर चॉकलेटी हीरो मनोज कुमार की फिल्मों की कुछ झलक यानी कुछ गाने सुन लिए जाएं। फिल्म पत्थर के सनम।

उपकार के इस गाने की एक दिलचस्प कहानी है। गुलशन बावरा रेलवे में क्लर्क हुआ करते थे। रेल गोदाम में पंजाब से आती थी गेहूं की बोरियां। जब गेहूं की इतनी सारी बोरियां उतरा करती तो गुलशन बावरा के कवि मन में एक पंक्ति कौन थी, मेरे देश की धरती सोना उगले। बरसों बरस ये पंक्ति उनकी डायरी में बनी रही। बाद में मनोज कुमार ने इसे फिल्म उपकार में शामिल किया। सन 1970 मनोज कुमार अपनी दूसरी फिल्म लेकर आए, पूरब और पश्चिम। ये फिल्म परंपरा और पश्चिमी संस्कृति के टकराव की कहानी थी। इस फिल्म की चारों तरफ बड़ी तारीफ हुई और ये गाना जैसे भारत के गौरव का गान बन गया।

0: सुनाता हूँ।
1: सन 1972 में मनोज कुमार नजर आए फिल्म बेईमान में। इसी साल मनोज कुमार ने अपने प्रोडक्शन से अगली फिल्म प्रस्तुत की जिसका नाम था शोर।

फिल्म शूर के गाने बेहद मकबूल हुए। सन 1974 मनोज कुमार ने एक ऐसी फिल्म बनाई, आजादी के बाद बनते हुए भारत के सपनों से थोड़े से मोहभंग की कहानी थी। एक ऐसी फिल्म जिसने बताया कि हम सब अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन देश में हैं कुछ समस्याएं जिन्हें निपटाना जरूरी है। यह फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मनोज कुमार के साथ नजर आई जीनत अमान।

इसके बाद मनोज कुमार नजर आए फिल्म 10 नंबरी में। मनोज कुमार दिलीप कुमार के हमेशा से जबरदस्त फैन रहे हैं। दिलीप कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका उन्हें मिला सन 1981 में अपनी फिल्म क्रांति के जरिए।

क्रांति के बाद मनोज कुमार की फिल्में ज्यादा नहीं चली। धीरे धीरे मनोज कुमार नेपथ्य में चले जाते रहे, लेकिन मनोज कुमार के चाहने वाले कायम रहे। आज भी उनके मैनरिज्म को, उनकी अदाओं को, रुपहले पर्दे पर उनकी मौजूदगी को लोग बहुत याद करते हैं। आइए सन 1970 में आई फिल्म पहचान का ये गाना सुने, जिसे हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि और गीतकार नीरज ने लिखा। बस

0: सन 1989 में मनोज कुमार ने बनाई फिल्म क्लर्क और सन 1995 में मैदानी जंग। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और लेखक मनोज कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एजेंसी ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की 3री और 4थी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। डीएमआरसी ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से इन मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया था। आज ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाई गई। एक रिपोर्ट।
2: आज पुरी का पवित्र शहर गहरी भक्ति भावना से सरोवर है, जब लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा देखी। पारंपरिक रस्में पूरे होने के बाद भाई बहन की ये मूर्तियां श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक अपनी पवित्र वापसी यात्रा पर निकली। सालाना रथ यात्रा का समापन नीलाद्री विजय रस्म के साथ होगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। उधर चीन के हांगझोऊ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, National Testing Agency has terminated 47 officials from service. The National Testing Agency has issued advertisements for a set of senior professionals' appointments at the level of general manager. It has also opened the engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. The NTA, in a statement, said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that is being implemented in line with the recommendations of the High-Level Committee of Experts, chaired by Professor K. Radhakrishnan. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh today met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said they gave a patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put forth three main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussion with the delegation tomorrow.
4: The meeting lasted for nearly 2 hours. I, along with Union Minister Jitendra Singh, participated in the discussion. The discussions were held in a cordial atmosphere and various issues were discussed from every perspective. Their proposal was also discussed.
3: Spokesperson of CJP Ashutosh Ranka, who was part of the CJP delegation, claimed that the government has in principle agreed to two of their demands. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved third and fourth rail line of Bellary-Guntakal section in Karnataka and Andhra Pradesh with a total cost of 1,264 crore rupees. It will increase the existing network of Indian Railways by about 46 kilometres. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said it will improve connectivity between Andhra Pradesh and Karnataka.
5: आज अप्रूवल हुआ है गुंतकल से बेल्लारी थर्ड एंड फोर्थ लाइन
6: टुडे अप्रूवल हैज बीन ग्रांटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ रेलवे लाइंस बिटवीन गुंतकल एंड बेल्लारी फर्दर अहेड द डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर द थर्ड एंड फोर्थ रेलवे लाइंस बिटवीन हॉस्पेट एंड हुबली इज ऑलरेडी अंडर प्रिपरेशन दिस विल क्रिएट अ कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर इन नॉर्थ कर्नाटका कनेक्टिंग बोथ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश द प्रोजेक्ट इज शेड्यूल्ड टू बी कंप्लीटेड विद इन 3 years
5: और 3 साल का ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है.
3: Mr. Vaishnaw also informed about the Cabinet's approval for Bharat Audyogik Vikas Yojana Rasayan or Bhavya Rasayan scheme for establishing 3 dedicated chemical parks in the country. Both the Houses of Parliament were adjourned for till Monday following ruckus for the 5th consecutive day today over the issue of NEET paper leak and student protest. Heavy rains continue to lash several parts of Gujarat, disrupting normal life across multiple districts. Today, the North Gujarat region received a heavy downpour, with Radhanpur in Patan district recording over 9 inches of rainfall and Santalpur witnessing nearly 9 inches. Our correspondent reports Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Shanghvi are continuously monitoring the flood situation in South Gujarat. In shooting, India's Sanyam won the silver medal in the women's 10-meter air pistol event at the ISSF World Cup in Hangzhou, China, opening the country's medal account at the tournament. And that is the end of this news bulletin.

आप सुन रहे हैं छाया गीत। क्या गुम हुई चीजें भी मेले में गुम बच्चे की तरह घर लौटने को बेताब रहती होगी? क्या वो भी मिलने वाले को अपने मालिक का अता पता बताती होगी? फिर कुछ इस तरह होती होगी घोषणा।

चीजें जैसे ही किसी को मिलती है उनकी खुशी भी देखते ही बनती है। शायद उन्हें भी याद आ जाती हैं अपनी गुम हुई चीजें, तभी तो वो झूम कर बताने लगते हैं मिली हुई चीज का हाल, खोजने लगते हैं उनका पता जिसकी है ये चीज।

एक बार जो गुम हुई चीज मिल जाए तो यूं लगता है जैसे सारी उम्मीदें हो सकती हैं पूरी। इस जहान में कुछ भी नहीं है नामुमकिन, बस शिद्दत से खोजा जाए तो मिल सकता है कुछ भी। दिल का चैन, खुशियां, सुख, मन की शांति, और दिल कह उठता है।